मिडवे 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 5वीं तिथि तदनुसार 26 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री

0: यादव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। हम प्रभु को यहाँ वहाँ मंदिर में खोजते हैं, जबकि हम ध्यान दें तो प्रभु हमारे मन

संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। हम प्रभु को यहाँ वहाँ मंदिर में खोजते हैं, जबकि हम ध्यान दें तो प्रभु हमारे मन में ही विराजमान है। ईश्वर कण कण में है, हम सभी ईश्वर पर निर्भर हैं।

हम बाहरी दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हमारा मन अंदर से शांत ना हो, और हमारा मन अंदर से तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान प्रभु की आराधना में लगाते हैं।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौडवाल और हरि ओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं रामप्रसाद विस्मिल के विचार।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इन ओजस्वी पंक्तियों के रचयिता रामप्रसाद बिस्मिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक भावना का नाम है। देश के लिए बलिदान हो जाने की भावना, देश को निजी स्वार्थों से ऊपर रखने की भावना, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी के सार तत्व को पूरे सम्मान के साथ, पूरी आस्था के साथ स्वीकार करने की भावना, देश प्रेम उनकी सांसों में बसा था, उनकी रग रग में कूट कूट कर भरा था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास और अनगिनत बलिदान होते हैं, तब कहीं वो स्वाधीन हो पाती है, स्वाधीन रह पाती है। भारत माता को स्वाधीन करने का संकल्प तो सभी देश प्रेमियों में था, किंतु उनके रास्ते अलग अलग थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित उनके निष्ठावान अनुयायियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और समान रूप से असहाय मानी जाने वाली जनता के संकल्प को ही एक अमोह और शक्तिशाली अस्त्र के रूप में बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने देश के प्रति समर्पित सैन्य शक्ति जुटाकर भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां काट देनी चाहिए। अनेक ऐसे भी थे जो क्रांतिकारी उपायों से उन लोगों को निर्बल करने में विश्वास रखते थे जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था, जैसा शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल आदि अनगिनत बलिदानी क्रांतिकारियों ने किया। बस जैसे भी हो, देश को आज़ाद कराना है, यही उनका लक्ष्य और संकल्प था। यह सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और बहुत दूर तक चलता चला जाता है। देश ही उनकी पूजा था, उनकी आस्था था, उनका विश्वास था। ये पूजा कोई मंदिर में जाकर करे या मस्जिद में, गुरुद्वारे में करे या गिरजाघर में, इसकी गहराई में कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर डालते हैं वे जो निहित स्वार्थ को देश के हित से ऊपर मानकर चलते हैं, जो ये कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। उन्हें किसका डर, अपने लिए तो उनकी कोई कामना ही नहीं है, जो कुछ है सब मातृभूमि पर न्यौछावर है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के एक गाँव में हुआ, किंतु लालन पालन शाहजहांपुर में हुआ, जहां उनके पिता पंडित मुरलीधर बाद में जाकर रहने लगे थे। बिस्मिल दसवीं कक्षा में थे, तभी गेंदालाल दीक्षित की अध्यक्षता में उन्होंने क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश किया। मातृभूमि की मुक्ति के दीवानों के लिए संघर्षों और यातनाओं का मार्ग प्रशस्त था। कई बार उन्हें मृत्यु से साक्षात्कार करना पड़ा, कितनी ही बार पैसा न होने के कारण घास पात खाकर गुजारा करना पड़ा, किंतु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। आगरा, राजस्थान, नेपाल, जाने कहां कहां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। संध्या के समय 8 नवंबर की एक रेलगाड़ी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। एकाएक काकोरी और आलमनगर के बीच गाड़ी एक खंभे के पास खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने पुकार कर

0: मुसाफिरों से कह दिया कि वे केवल सरकारी खजाना लूटने ही आए हैं, किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं है। इसके बाद गार्ड से चाबी लेकर तिजोरी बाहर निकाली गई और लगभग पौने घंटे में लूट की धनराशि लेकर क्रांतिकारी वहां से चले गए। 25 सितंबर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई और रामप्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए। उन्हें फांसी की सजा हुई और दिसंबर 1927 में गोरखपुर में इस आज़ादी के दीवाने को फांसी पर लटका दिया गया। अंतिम समय मातृभूमि से विदा लेते हुए उन्होंने कहा था, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाने वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं लाख उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका विषय पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह से राम प्रकाश सिंह की बातचीत।

0: अपने यहाँ भैया देखा लाख का उत्पादन किसान भाई करत हैं, और काफ़ी समय से एकर भाई उत्पादन का जौन तौर तरीका हो एकरे बारे में या और भी इसे जौन जुड़ल बात हैं किसान भाई की जिज्ञासा रहते हैं कि भाई उनके बेहतर जानकारी दी जाए। तो देखा आज लाख उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका यह विषय पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह भैया हमारे बीच में आए बाटें। तो सिंह साहब हमारे कार्यक्रम में आपको स्वागत हो। तो ये लाख उत्पादन किसान भाई पहले से भी कह रहा हूँ, बाकी बेहतर तरीका से उनके अच्छा उत्पादन मिले तो यह बारे में आप थोड़ा जानकारी दें।
1: धन्यवाद। लाख उत्पादन एक बहुपयोगी गोंद और राल उत्पादन है जो एक सूक्ष्म कीट का दैहिक स्राव है।
0: जी
1: लाख उत्पादन करने के लिए पोषक वृक्षों जैसे कुसुम, पलास, बेर आदि पौधों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में पैदा होने वाली लाख का लगभग 60% हिस्सा झारखंड राज्य में होता
0: अच्छा
1: है और बाकी छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से लाख उत्पादन की जाती है। लाख की खेती यानी लाख कीट पालन से वृक्षों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक प्राकृतिक गोंद उत्पादन है जो लाख कीट लैसीफेरा लेक्का के मादा कीट द्वारा स्राव के फलस्वरूप बनता है।
0: अच्छा
1: पूरे विश्व में लाख की 9 प्रजातियां हैं। इसमें से भारतवर्ष में 2 प्रजाति है जिसका नाम लेसीफेरा एवं पैराटेरा कार्डिना है। इनमें से लेसीफेरा की लेक्का प्रजाति मुख्य रूप से पूरे देश में पाई जाती है और
0: अच्छा
1: इसकी 2 प्रजाति होती है, कुसमी तथा रंगीनी।
0: अच्छा
1: रंगीन लाख कीट से एक वर्ष में 2 फसलें ली जाती जिसे बैसाखी ग्रीष्मकालीन तथा कत्की वर्षाकालीन फसल कहते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जौन ये लाख कीट पालन कीन जात है
1: जी,
0: तो ये के पालन का जौन सामान्य प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा बताओ।
1: लाख की कीट लाख उत्पादन के लिए सबसे पहले वृक्षों की काट छांट जैसे वृक्षों पर बेहन चढ़ाने या कीड़ा छोड़ने के पहले वृक्षों की काट छाट इसलिए आवश्यक है
0: हाँ
1: क्योंकि लाख कीट नरम मुलायम और रसदार टहनियों पर अच्छा फलता है।
0: अच्छा
1: काट छाट की प्रक्रिया कीट छोड़ने के 6 माह पहले सबसे उपयुक्त होता है। बैसाखी फसल जो अक्टूबर या नवंबर में लगाई जाती है उसकी काट छाट अप्रैल माह में करना चाहिए। यदि पहले से पेड़ पर लाख नहीं हो तो यह प्रक्रिया मार्च में

0: जब फली आना प्रारंभ होता है उसी समय कर लेना चाहिए।
1: अच्छा, अभी बताओ कि जौन ये होता है एक पौधा होता है जौन पौधा पर लाख के कीट भाई पाला जाते हैं, तो वो पौधा का भी तो हम कहीं काट छाट के कुछ समय होते ही।
0: हाँ, काट छाट के लिए मार्च के महीने में काट छाट करते हैं, और काट छाट के हल्की कटाई छटाई करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: जिसमें अंगूठे के अंगुली के मोटाई के अनुसार
1: हाँ
0: 2.5 सेंटीमीटर व्यास से मोटी टहनिया को नहीं काटना चाहिए।
1: अच्छा,
0: 1.25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली टहनिया को एक साथ 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से काटना चाहिए, और 1.25 सेंटीमीटर व्यास से कम मोटाई की टहनिया को उनके उत्पत्ति स्थान से ही काटना चाहिए।
1: अच्छा, जड़े से काटते हैं।
0: हाँ, और सूखी रोगग्रस्त या टूटी फूटी टहनियों को क्षतिग्रस्त स्थान से काटना चाहिए, और जो ठूठे हों उनकी भी उस पर स्थान से काट कर निकाल जाना चाहिए। काट छाट तेज धार वाले दावली से करना चाहिए। टहनियाँ तिरछी साफ और एक बार में काटे। पहली बार काट छाट करते समय पेड़ का उचित आकार देने के लिए थोड़ी बहुत मोटी भी शाखाएं काट सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब काट छाट का बहुत बड़ी भूमिका है भाई, और हम कहब कि एहमें शत्रु कीट एक ठे बड़ा परेशानी खड़ा कर देता है, तो ये शत्रु कीट का रोकथाम कैसे करें?
0: शत्रु कीट के लिए सबसे पहले पेड़ पर संचारण की प्रक्रिया इसमें 3 तरह से करते हैं। पहला, पेड़ों पर कीट संचारण की प्रक्रिया कई स्थानों पर बीहन लाग की डंडियों को बांध कर किया जाता है।
1: अच्छा,
0: जो 3 प्रकार से होता है। पहला, प्रारंभिक या कृषक विधि। 1 से 3 फीट परिपक्व लाग कीट युक्त टहनी पत्ती सहित नए पेड़ों में फंसा देते हैं। वैज्ञानिक तरीके के अंतर्गत बीहन लाग डंडियों को बंडल बनाकर तुलसी से कहीं कहीं बांध देते हैं।
1: अच्छा,
0: और तीसरा, बंडल बांधने के आसपास की टहनियों को यदि कीट भर जाए तो बंडल खोलकर दूसरे ऐसे स्थान पर हस्तांतरित कर दें जहाँ की टहनियाँ खाली हों। और कीट नियंत्रण के लिए, शत्रु कीटों की रोकथाम के लिए तथा कोहरे से होने वाले नुकसान के लिए बचाने के लिए कीटनाशक एवं फफूदनाशक छिड़कने की आवश्यकता होती है।
1: अच्छा,
0: पलाश पर अगर लाख तैयार किया जा रहा है
1: हाँ,
0: तो उसमें फिप्रोनिल 5% AC.07% का छिड़काव शत्रु कीटों की रोकथाम के लिए करती हैं।
1: अच्छा,
0: तथा कार्बनडाजिम फफूंद के लिए आवश्यक है। पहला छिड़काव बीहन चढ़ाने या कीट निर्गमन के 30 दिन पर।
1: अच्छा,
0: तथा दूसरा 60 दिन पर करना चाहिए। कीट एवं फफूंद नाशक दवाएं बनाने के लिए 15 लीटर पानी में लगभग 20 से 25 मिलीलीटर फिप्रोनिल तथा उसी में कार्बनडाजिम 10 ग्राम पाउडर मिलाकर बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: एवं उसके प्रयोग से बीमारी एवं फफूंद का प्रकोप नहीं
1: जी,
0: होता
1: जी,
0: है।
1: जी, जी। अच्छा, एहमें ये कहा जाता है कि खंड प्रणाली एक सुने में आवत है, तो खंड प्रणाली का होते हैं बारे में थोड़ा समझा के बताऊं।
0: खंड प्रणाली, इसमें पलाश के कुल वृक्षों को 3 खंडों में बांटकर खेती कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: 2 खंड से बीहन लाख तथा शेष 1 का बैसाखी अरी फसल के उत्पादन हेतु उपयोग करते हैं।
1: अच्छा,
0: पहले बीहन खंड से प्राप्त बीहन का उपयोग दूसरे बीहन खंड से तथा अरी खंड के वृक्षों को कीट संचारण हेतु उपयोग करते हैं। अतः पहले बीहन खंड से वृक्षों से 2468 प्रतिवर्ष तथा दूसरे बीहन खंड वृक्षों से 3579 प्रतिवर्ष लाख के कीट पाए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जबकि अरी खंड के वृक्षों से प्रतिवर्ष अप्रैल में कच्ची लाख पाया जाता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जितना आप जानकारी बतौला है, हम कहें कि ये भी लाख उत्पादन से जुड़ा बा, ये सब जानकारी से बेहतर तरीका से अपन उत्पादन कर सकते हैं, कोनो किस्म का उनके नुकसान ही नहीं उठावे के पड़ी। तो हम कहें डॉक्टर साहब, जैसे आप बतौल हैं किसान भाई ये भी ऐसे जुड़ा बा ध्यान दी हैं, आप हमारे कार्यक्रम में अलें और बहुत अच्छी बातचीत कर लें, जानकारी देना आपके

0: अभी आप सुन रहे थे लाख उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका विषय पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह से राम प्रकाश सिंह की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। लीजिए सुनिए डॉक्टर आशुतोष मालवी की वार्ता, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण।
2: मित्रों, आजकल के प्रतिस्पर्धा के युग में लोगों में मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं और ये मानसिक परेशानियां आपको मानसिक और शारीरिक दोनों के ही रूप में बिगाड़ देती हैं। मनुष्य की सफलता हो या असफलता, हमेशा आपके स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर पर निर्भर करती है। स्वस्थ मन से आप में सकारात्मक सोच बढ़ती है, वहीं स्वस्थ तन से आप कर्मयोगी बनकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। आजकल लोगों में सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत या स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें सही निर्णय न ले पाने पर उनमें अवसाद या तनाव की स्थिति बनने लगती है और इस अवसाद और तनाव से अनिद्रा, उलझन बढ़ने लगती है, जिससे आपकी प्रगति तो बाधक होती ही है, साथ ही साथ शरीर का पाचन एवं स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। मैंने महसूस किया है कि आजकल लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ने के कुछ अहम कारण होते हैं, जिनमें संतुलित आहार का अभाव होना, बेसमय भोजन करना, फास्ट फूड, जंक फूड पर ज़्यादा रुझान होना, जैसे शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं पहुंच पाते, देर रात जागना, सुबह देर में जाग उठना, शराब तंबाकू का अधिक सेवन करना, बहुत सी बातों के मूल तथ्यों को जाने समझे बिना ही निर्णय ले लेना, नियमित शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम आदि का सर्वथा अभाव होना, इससे मानसिक तनाव और मन की ताकत कम होने लगती है। मानसिक अवसाद या मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन खुली हवा में टहलना, योग, प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा 5 या 6 बादाम घिसकर 3 दाने 4 दाने काली मिर्च के साथ प्रयोग करना अत्यंत लाभदायक होता है। आयुर्वेद की औषधियों में ब्राह्मी वटी या ब्राह्मी घृत या ब्राह्मी रसायन का उपयोग शरीर और मन दोनों की ताकत को बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसी प्रकार मुलेठी का चूर्ण गोदुग्ध के साथ पीने से मानसिक शक्ति बढ़ती है तथा सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है। शंखपुष्पी, जटामासी, वच, सर्पगंधा, ज्योतिषमती का तेल, ये ऐसी वनौषधियाँ हैं जिनका नियमित प्रयोग करने से आदमी मानसिक तौर से बीमार नहीं हो पाता, मन की ताकत बढ़ती है और उसे निर्णय लेने में सहूलियत रहती है। मन की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे 4-5 बार खुलकर हंसना, मनोविनोद करना, जोर से हंसने से हृदय प्रदेश, फेफड़े, मस्तिष्क का रक्त संचार अत्यंत लाभदायक होता है, बढ़ जाता है। हंसने मनोविनोद से शारीरिक सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं जो मस्तिष्क से नकारात्मक विचार को दूर करने लगते हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार फोटोग्राफी, पेंटिंग, भोजन बनाना, मनपसंद पुस्तक पढ़ना, मनपसंद संगीत को सुनना आदि अपने दैनिक कार्यों में रखना चाहिए। चिड़िया की चहचहाट, रंगीन मछलियों के जल क्रीड़ा में रुचि रखना, इससे मानसिक थकावट दूर होती है और मन की शक्ति बढ़ती है। अपने जीवन काल की पिछली गलतियों को बार बार सोचना भी उचित नहीं है, ना उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नकारात्मक सोच बढ़ती है और आपके दिमाग की सकारात्मक सोच कम होने लगती है, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अपने जीवन की जो भी समस्याएं हों, आत्मसंशय हो, सेल्फ डाउट हो, उसकी चर्चा उसी व्यक्ति से करना चाहिए।

0: जो उसके योग्य हो। अपने समस्याओं की चर्चा उस व्यक्ति से बिल्कुल ना करें जो उस लाइन का ना हो, उससे उसकी सोच ना हो। जैसे शिक्षा की समस्या का निराकरण अपने संबंधित गुरु से करें, स्वास्थ्य का निराकरण चिकित्सक से करें, कानून की समस्या का निराकरण किसी अच्छे अधिवक्ता से करें। प्रत्येक दिन शांत मनचित्त से अपने कार्यों पर कुछ क्षण तक गहन विचार करना चाहिए। सकारात्मक विचारों को गति देना चाहिए, अत्यंत जरूरी होता है। नियमित व्यायाम, रोग प्राणायाम, प्रातःकाल खुली हवा में टहलना, भ्रमण करना अत्यंत लाभदायक होता है। सप्ताह में एक या दो बार नैतिक सेक्स करने से भी मानसिक अवसाद या मानसिक ताकत मिलती है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष मालवीय की वार्ता उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम में अर्जुन पुरस्कार से विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंट वार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित एथलीट चंद्रोदय नारायण से भूपेंद्र कुमार मिश्र की बातचीत। प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। सुबह 7 बजे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा। 7:10 पर फिल्मों से भजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर उमाडे का ख्याल गायन। दिन में 12:15 पर दर्शन सिंह का क्लोरिनेट वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर लक्ष्मीबाई राठौर केसवर में भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर लोकमाद्री कार्यक्रम में कलाकार होंगे लहरी लालजी यादव और सावित्री श्रीवास्तव। दोपहर 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे जगदीश यादव और रेणु राज सिंह। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 सुनेगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दिन में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम पनघट। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे कुंवर सिंह और साथी। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम सुनिएगा। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता महाभारत से शाश्वती प्रासंगिकता। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम। रात 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उर्दू के फरोग में नॉवल का योगदान विषय पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा। वाचन व संपादन विनय श्रीवास्तव का, प्रस्तुति होगी मोहम्मद शमीम की। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्मभूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशद् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉक्टर एन राजम अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि द्वित्रि दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

आज वो शुभ दिन शुभ घड़ी आ पहुंची है जब वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। एक अनुपम दृश्यावली की रचना हो रही है।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन। लता मंगेशकर की आवाज़ में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये भजन, लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है सुधीर फड़के ने, रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

अभी आपने सुना भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देश भर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार।

0: स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएं। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण

0: और पक्षीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं उमा डे का ख्याल गायन राग है भटियार।

अभी आप सुन रहे थे उमाडे का ख्याल गायन, राग था भटियार। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे अनिल कुमार शाह, सरंगी पर नज़ीर अहमद। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, हम एक बार पुनः आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस बार का विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाले रोग और उनका उपचार। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी शहर प्रयागराज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी। आप अपने प्रश्न दिनांक 27 मई 2026 को शाम 3 बजे से 4 बजे तक फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0532-2970462 और 2423649 पर। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य

0: आपातकाल घोषित किया, डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के

मार्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई।

0: जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और PV सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में PV सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा

0: मिक्स्ड डबल्स में तनिषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary

0: बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैन अलाक्वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें ताकि मुमकिना एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में CNG की कीमत 83 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरान आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान टिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का

0: हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी एहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है रिश्तों में लाएं मिठास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन में बहुत महत्व होता है। परिवार, मित्र, पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों के साथ हमारे संबंध ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। यदि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और अपनापन हो तो जीवन सुखमय बन जाता है। इसलिए रिश्तों में मिठास बनाए रखना बहुत आवश्यक है। रिश्तों में मिठास लाने का सबसे बड़ा आधार है आपसी सम्मान।

जब हम दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, तब हमारे संबंध मजबूत होते हैं। मधुरवाणी से भी रिश्तों को सुंदर बनाया जा सकता है, कठोर शब्द रिश्तों को खराब कर सकते हैं। श्रोताओं, आज हमने देखा है, हमने क्या, आप सब ने महसूस किया होगा कि हमारे रिश्ते सिमट कर रह गए हैं। हम रहते तो एक शहर में हैं, लेकिन एक दूसरे के घर जाना तो दूर, फ़ोन पर बात करना भी कभी कभी एक बोझ सा लगने लगा है। तमाम सुविधाएं होने के बावजूद हम सिर्फ अकेले ही रहना सीख रहे हैं। आज लोग अपने आप से, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माँ बाप से ही मतलब रखते हैं। श्रोताओं, एक समय था जब लोग आस पड़ोस, मोहल्ले और अपने गांव के लोगों को भी उतना ही महत्व देते थे जितना कि अपने घर के लोगों को। एक साथ बैठकर बातें करना, हंसी मजाक करना, खाने की चीज़ को मिल बांट कर खाना, अब वो समय नहीं रहा। आज फ़ोन में बैलेंस इतना है कि चाहे जितनी देर बात की जाए, लेकिन लोग सुबह उठने से पहले व्हाट्सएप पर अपने मित्र, भाई या सगे संबंधी को गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं और व्हाट्सएप पर ही पूछ लेते हैं, हाँ कैसे हो, क्या हो रहा है, खाना हुआ या नहीं, और रात को सोने के पहले गुड नाइट करके सो जाते हैं।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं रिश्तों में लाए मिठास की। कुछ साल पहले जब फ़ोन का इतना चलन नहीं था, तब लोग शहर से जब चिट्ठी भेजते थे तो घर के लोग सब इकट्ठे होकर सुनते और हालचाल सुनकर खुशी प्रकट करते थे। वो एक ऐसा समय था कि लोग घर परिवार के साथ सुख दुख में एक साथ खड़े रहते थे। श्रोताओं, हमारे

रिश्ते कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं। हमारे अपने उन रिश्तों को संभालना होगा, उनको समय देना होगा। छोटी छोटी बातों से नाराज़ ना होकर बैठकर बातों को समझना चाहिए। अपने लोगों को समय दें, किसी की बातों को दिल से ना लगाएं, इग्नोर करने की कोशिश करें। अपनों से बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार करना सीखें। जब रिश्तों में खटास आने लगे तो धैर्य, समझ और सही बातचीत की बहुत आवश्यकता होती है। अपनी बात कहने के बजाय उनकी बात को सुने। पुरानी बातों को दोहराने से रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, पुरानी यादों को ताज़ा करें, छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखें। इस तरह से हमारे किसी भी रिश्ते में, चाहे वह सास बहू का हो, ननद भाभी का हो या फिर भाई भाई का हो, हमारे अच्छे व्यवहार और बैठकर समझने से हर रिश्ते को बचाया जा सकता है।

भावनाओं और चिंताओं को बिना डर के खुलकर साझा करें, दूसरे व्यक्ति की बात को धैर्य से सुने और उनकी जगह खुद को रखकर समझने की कोशिश करें। कटु शब्दों और पुरानी बातों को बार बार उठाने से बचें। श्रोताओं, इस तरह हम अपने रिश्तों को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है, क्योंकि बिना दाग के तो चांद भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए, आपके मीठे बोल भी लोगों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। शब्दों की मिठास ही रिश्तों की असली पूंजी है। कड़वे बोल तो मीठे फलों में भी कीड़े पैदा कर देते हैं। पानी कितना भी गंदा हो, अगर प्यास ना बुझा सके तो आग तो बुझा ही देता है। ठीक वैसे ही रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें कभी टूटने नहीं देना चाहिए। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004 9

श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार प्रयागराज से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है।

0: मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आपके साथ फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचना थी आनंद बख्शी की।

आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और रचना है समीर की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दीवाना फिल्म का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
2: जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत से हाथरस में हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास से किया गया, जहां पर्यवेक्षक और प्रांगणकों ने जिलाधिकारी अतुल बस के आवास का सूचीकरण करते हुए मकान संख्या अंकित की। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में मकान सूचीकरण जनगणना कार्य के लिए 3607 प्रांगणक और 472 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। यह अभियान 22 मई से 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के सभी मकानों और परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले में पुलिस लाइन ऑडिटोरियल में जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए। इस मौके पर BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य व छात्र छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक पर प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 225 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भवन सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता एवं सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय की उपस्थिति में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनपद में सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़, सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अंतर्गत

0: आने वाले समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल वस ने संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नहरों, नालों एवं नदियों की वर्तमान स्थिति, उनकी सफाई, मरम्मत, जल प्रवाह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की स्थिति तथा नगर क्षेत्रों में नहरों, नदियों में गिरने वाली दूषित जल की समस्या पर गहनता से विचार करने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त आवश्यक कार्यों व टेंडर प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वस ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति केवल औपचारिक मंच नहीं बल्कि उद्यमियों और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वस ने ईवीएम बीवीपैट वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईवीएम बीवीपैट वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे, सशस्त्र बलों की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों आदि व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, पूर्ण या अपूर्ण कार्यों को अनारंभ, परियोजना की बिंदुवार समीक्षा की। विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस द्वारा तलाब चौराहे स्थित कार्यक्रम स्थल पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण, कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अतुल वस, पुलिस अधीक्षक चंजीव नाथ सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा, भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पंछियों एवं गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना एक पूर्ण एवं मानवीय कार्य है। जल संरक्षण एवं जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जा रही पानी की टंकियां नान समाज में सेवा, संवेदनशीलता एवं माननीय मूल्यों को का संदेश देंगी।
1: हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने बीते 24 मई को एनटीपीसी उजाहर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जी ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जनपद में बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका द्वारा जनहित में हीट वेव लू से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी ने आम जन से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक तापमान रहने पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर एवं खतरनाक साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को

0: जो हम शरीर को गीले कपड़े से ढककर रखने तथा समय समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में दोपहर 12 से 3 तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की विशेष अपील की गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकर ने बताया कि भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करते हुए सूचीकरण और गणना का कार्य कर रहे हैं। अधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता एवं 100% सफलता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मकान गणना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, सरकारी नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में नियुक्त प्रगणक और सुपरवाइजरों ने आज से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक विवरण संकलित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी मकान छूटने न पाए, प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि
1: जनगणना 2027 है, उसका द्वितीय चरण हुआ है, जिसमें जो हमारे एन्यूमरेटर हैं वो डोर टू डोर जाकर हाउस की लिस्टिंग करेंगे। हाउस की लिस्टिंग यानी घर पर नंबर डालेंगे और उनको ब्लॉक के रूप में संगठित करेंगे, जिससे कि जब वो फिर से घर में जाएं तो वो प्रति घर जा पाए और कोई भी घर छूटने ना पाए। सभी से अनुरोध है कि इनके साथ सहयोग करें और जो इनके द्वारा दिए गए नंबर वगैरह हैं उसको मिटाएं ना, उसको मिटाना एक अपराध भी है।
0: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बीते 21 मई को विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेने हेतु निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बेला भेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों एवं समयबद्ध प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

साथ अपना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: सारे मोहतरम थे,
1: जी
0: डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद जो बेताज बादशाह थे मुशायरों के,
1: जी बिल्कुल
0: ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके शागिर्दों में, और ये खुशकिस्मती है कि ऐसे शागिर्दों में कि मैं उनके फैमिली मेम्बर की हैसियत से उन्हीं के घर रहता था।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी
0: ये
1: बात।
0: तो नतीजा ये है, बल्कि मैं ज़िमनी तौर पर यह भी जिक्र करूं उनके खानवादे का कि उनकी वाइफ को हम सब बाजी कहते थे,
1: जी
0: चुनाचे मैंने भी बाजी कहना शुरू किया। तो बाजी जो थी वो ख़ुद बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। दूसरी बात यह है, मोहम्मद अली ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये अंजाम दिया कि उन्होंने ये दावा किया अंग्रेज़ों से, ये कहा कि जब आप इस मुल्क को छोड़ कर जाएंगे तो आपने चूंकि ये मुल्क हमसे लिया था,
1: जी
0: इसलिए जब जाएंगे आप ये छोड़कर तो ये हमें सौंप कर जाएंगे।
1: बेशक, बहुत अच्छी
0: हाँ,
1: बात।
0: ये आप हमें सौंप कर जाएंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, और उन्होंने जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
1: जी
0: मोहम्मद अली गए तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर भीख मांगने नहीं आया हूँ,
1: क्या बात है,
0: मेरे सामने दो चीज़ें हैं, या तो मौत और या आज़ादी का परवाना।
1: आजादी का परवाना।
0: मैं उसी वक्त अपने मुल्क को वापस जाऊँगा जब मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा।
1: क्या जज्बा था।
0: ये यही हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली जब वहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मौत को सीने से लगा लिया।
1: क्या
0: ये
1: बात
0: बहुत बड़ी शान की बात है।
1: जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि ऐसे मुजाहिद आज़ादी यहाँ पर पैदा हुए और उनकी परवरिश हुई बी अम्मा जो थीं, उनकी वालदा मोहतरमा, उनके हाथों से और उनके ही तेरे सरपरस्ती उन्होंने परवरिश पाई और ऐसा जज्बा पाया कि वो देखें आपके वो आज़ादी का परवाना मांगते थे या फिर मौत को गले लगाना,
0: हाँ,
1: लेकिन मौत को ही गले लगाया और शहीद हुए वहाँ पर। आपकी परवरिश रामपुर में हुई और रामपुर में आपने बहुत अच्छा दौर, बहुत अच्छा वक्त देखा है।
0: नवाबीन के
1: अच्छा, निकल
0: मैंने
1: चुका था।
0: खास बाग में मुझे जाने का शर्फ मिला,
1: अच्छा
0: और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बेगम साहब, नवाब रज़ा अली ख़ान साहब की जो बेगम साहिबा थी,
1: जी जी जी
0: उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला।
1: जी जी
0: ये बहुत बड़ी बात
1: बड़ी
0: है
1: बात है
0: कि नजियाबाद ख़त्म हो चुका था,
1: जी।
0: लखनऊ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था,
1: जी
0: और रियासतें भी मर्ज हो रही
1: जी
0: थी।
1: बिल्कुल
0: तो अब रामपुर में सिर्फ राजमाता ही हमारी गोया
1: नवाबों
0: नवाब
1: में बची
0: जहाँ
1: थी
0: जहाँ
1: जो
0: वो
1: संभाले हुए थी रामपुर
0: जहाँ
1: को।
0: जहाँ
1: जी,
0: उनसे
1: उनसे गुफ्तगू आपकी रहती थी यह।
0: रौनक थी, और
1: जी,
0: उनके पास बैठकर मैंने उनसे गुफ्तगू की है।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ,
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आपकी और आपके जो सिलसिला चल रहा है खानवादे का। आपने जिक्र किया मोहम्मद अली जौहर का, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली का, बी अम्मा का, और इसी तरह से आपने जिक्र किया नवाबों में मोहतरमा राजमाता साहिबा का। अब बात चलती है रामपुर की, और देखें डॉक्टर साहब के एक जो हम बात कर रहे हैं बेमिसाल 90 साल, यानी रेडियो के 90 साल, तो वो होने जा रहे हैं हमारे हमारे लिए बहुत खुशनसीबी कि हम, मतलब जो जनरेशन हमारी वाली जनरेशन है, उसने वो देखा, वो वक्त भी देखा, और हमने 80 का दौर और 90 का दौर भी देखा कि मतलब क्या रेडियो की चाहत थी और क्या रेडियो का एक क्रेज था और बहुत शौक से लोग सुना करते थे। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी, यानी जब आप होश में होंगे उस टाइम, जब समझदार हुए होंगे आप माशाल्लाह बचपन से हट के, तो उस वक्त का दौर आप थोड़ा सा रेडियो के बारे में बताइए हमारे सामीन को कि रेडियो का क्या क्रेज था, क्या शौक से सुना करते थे लोग।
0: रेडियो का यह था क्रेज़ कि सुबह को उठने के बाद
1: जी
0: माँ फरमाना, नमाज के बाद तिलावत तो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन रेडियो को लगा दिया करते थे लोग। मुझे कहना नहीं
1: जी
0: चाहिए
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: लफ्ज़,
1: जी, बिल्कुल
0: मैं माज़रत
1: जी
0: चाहूँगा,
1: जी कोई बात
0: लेकिन
1: नहीं,
0: असल मसला यही है
1: यही है
0: कि रेडियो लगा दिया करते थे और रेडियो को सुनते रहते थे। लोग अपना अपना काम भी करते थे, ख़वातीन घर में काम भी कर रही हैं,
1: जी
0: और पूरी आवाज़ से रेडियो था जो था वो बजता रहता था,
1: जी
0: और रेडियो को सुनाया जाया करता था।

0: लोग काम भी करते रहते थे।
1: जी
0: दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करूं कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी मुख्तलिफ किताबों पर
1: जी
0: लोग, मैं माफ़ फरमाना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं
1: जी
0: किसी
1: जी
0: को,
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, वो
0: मैं
1: एडवर्टाइजमेंट की
0: असल
1: बात नहीं, ये आप
0: असल
1: अपनी शौक की चीजें बता रहे
0: असल
1: हैं।
0: असल बात बता रहा हूं,
1: जी
0: वो ये है कि जो मौजूदा दौर है, इस मौजूदा दौर को बाज़ लोग अफवाहों पर यकीन करके मालूम नहीं किस किस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं,
1: जी जी बिल्कुल
0: लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मुझे इस दौर में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा एक स्कॉलरशिप मिलता है,
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो
0: बल्कि
1: ये तो खुशनसीबी
0: हकीकत।
1: की बात है,
0: हाँ जी हाँ, कि मुझे
1: ये सरकार आपको वजीफे के तौर पे,
0: वजीफे के तौर पर मुझे दे रही
1: और
0: है।
1: जो राइटर होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि उनको नवाजा जाता है, आपको
0: जी हाँ
1: एजाज से नवाजा
0: जी
1: जा
0: हाँ
1: रहा
0: जी
1: है।
0: हाँ, 15 किताबें मेरी कम अज़ कम आ चुकी हैं
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: मुख्तलिफ मौजूआत पर हैं। दूसरी बात यह है कि उन किताबों में उन बातों का भी मैंने ज़िक्र किया है
1: जी
0: कि जो मैंने कभी रेडियो पर सुनकर अपनी गिरह में मान ली थी।
1: क्या बात है,
0: देखिए, रेडियो पर ऐसी मालूमाती तकरीरें आती थीं
1: जी
0: और तकरीरें आती हैं आज भी
1: जी जी बिल्कुल
0: कि जिसे हम अगर सुने और अपनी गिरह में बांधे तो हमारी मालूमात कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं।
1: बिल्कुल, यही बात,
0: यह है।
1: यही बात है। कुछ चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं जब आपसे बातचीत हुआ करती थी, अब तो आप थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब आपके पास हम जाया करते थे और स्टूडेंट लाइफ थी, उस टाइम पे भी आपसे रूबरू होते थे और आपसे कुछ सीखते थे हम, तो हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है। और आप जिक्र किया करते थे रेडियो, देखें आप कैसा है महकमा है, कि रेडियो में जो चीज़ होती है वो सच्ची और पक्की होती है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आंखों देखा हाल
1: जी
0: बिल्कुल बयान करते हैं रेडियो वाले।
1: जी बिल्कुल
0: और जब वो बाहर भी अगर निकलते हैं तो चारों तरफ ये देखते हुए कि कहाँ क्या हो रहा है,
1: जी
0: और बिल्कुल सही शहर की सख्त पोजीशन क्या है।
1: जी बिल्कुल
0: बाज़ हज़रात ने यहाँ पर एक ज़माना ऐसा गुज़रा एक इनकलाबी का
1: जी
0: कि तैयारी ये कर दी थी कि शायद यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
1: नहीं हुआ।
0: रेडियो वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया, उन्होंने जो असल बात थी वो बताई और ये बताया कि यहाँ पर क्या क्या पोजीशन है और सब
1: हम
0: लोग
1: माहौल
0: सुकून
1: जो
0: से
1: है और
0: नॉर्मल
1: यहाँ
0: है,
1: नॉर्मल है और खुशगवार है, कोई
0: खुशगवार
1: ऐसी वारदात नहीं घटी है
0: नहीं
1: जिससे
0: है।
1: एक माहौल ख़राब हो,
0: हाँ
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ये तो, कि जो चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, जो साफ़ सुथरी बात है
0: जी
1: वही
0: हाँ
1: होनी चाहिए।
0: जी जी
1: डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे आप, जब शायद हमें भी अपने बचपन में देखा है और सुना भी है कि रेडियो पर फरमाइश आया करती थी, और उसमें जैसे ख़त आता था, जो चिट्ठियां होती थी, पत्र होते थे, वो डाक के ज़रिए इसमें यहाँ पे फरमाइश भेजी जाया करती थी, यानी कि जैसे मेरा नाम आ रहा है तो हम उस नाम को सुनने के लिए, फैमिली के नाम सुनने के लिए रेडियो बीच में रखा होता था, और आसपास सारे लोग घर के बैठे हुआ करते थे, और वो नाम आया करता था कि ये गाना सुनना चाहते हैं, यानी कोई भी XYZ मान लिया आपका नाम ही लिया जा रहा है, तो वो नाम मतलब खुशनसीबी की बात समझी जाती थी कि आज हमारा नाम रेडियो पर आया,
0: हमारा नाम रेडियो पर आया और हमारी फैमिली के लोगों का भी
1: फैमिली
0: नाम,
1: का
0: हमारे पास
1: नाम आया।
0: नाम आया,
1: जी
0: और बाकायदा जो खतूत भेजे जाते थे उन खतूत के हिस्से पढ़कर सुनाए जाते
1: सुनाए
0: थे
1: जाते थे बिल्कुल।
0: रेडियो पर,
1: जी जी
0: और उन हिस्सों में वो नाम भी होते थे
1: जी
0: जो घर वालों के होते
1: जी
0: थे,
1: जी
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: डॉक्टर साहब ये 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो हम जिक्र करेंगे उस दौर का भी, जब जैसे किले के आसपास या बाजारों में, जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में होंगे, स्टूडेंट लाइफ आपकी पूरी हुई थी, कॉलेज में भी आए होंगे, उस दौर में भी आपने देखा होगा कि होटलों पे रेडियो रखे होते थे और आसपास लोग उसको बैठकर सुना करते थे, तो कोई किस्सा मुझे ऐसा बताइए।
0: साहब मैं एक किस्सा बताऊं जिसे अब तहसील कहा जाता है,
1: जी
0: इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं पर था
1: क्या बात है,
0: उस जमाने।
1: मतलब वहां पर क्रीम बैठा करती थी।
0: जी हाँ, इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं था,
1: जी
0: और इन्फॉर्मेशन ऑफिस के अलावा भी वहाँ पर एक गैलरी थी।

0: उस गैलरी के अंदर लोग बैठा करते थे, गुफ्तगू करते थे, उस चबूतरे के ऊपर गुफ्तगू करते थे,
1: जी
0: और फिर बाकायदा उसे लिखा करते थे, और लिखने के बाद फिर ख़त की शक्ल में रेडियो स्टेशन को भेजा करते थे, और उसमें तफसील लिखते थे कि ये हमने फला जगह बैठकर लिखा है,
1: यानी जो शहर की मौजी शख्सियात होती थी वो वहाँ पर मौजूद होती
0: मौजूद
1: थी
0: होते थी
1: पूरे शहर रामपुर की।
0: चेहरे राम।
1: और वो दौर क्या दौर होगा, आप रामपुर का इतना डेवलपमेंट नहीं था रामपुर में उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र किया रेडियो का, और रेडियो का आपने जिक्र किया कि सारी चीज़ें जो होती थी वहाँ पर जो बातचीत हो रही है सारी मालूमाती, तो उसको ख़त की शक्ल में
0: खत की
1: आकाशवाणी
0: शक्ल
1: को भेजा जाता था
0: जा
1: रेडियो
0: जा
1: का।
0: जा खत की शक्ल में जा करते थे, और नाम उसमें सुना करते थे कि
1: क्या
0: हम
1: बात।
0: लोगों के नाम आ रहे हैं और हमारी फैमिली के नाम आ रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर एक महफिल में मुराद रामपुरी साहब से
1: मुलाकात हुई आपकी?
0: मुलाकात क्या हुई, मैंने बैठ के गुफ्तगू की उनसे, तो
1: अच्छा,
0: मैंने उनसे कहा कि फिल्में हमने बहुत सारी देखी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि कोई ऐसा आर्टिस्ट करीब से मैंने नहीं देखा जो बाकायदा फिल्मों में अदालत की डिग्निटी और उसके मेयार को कायम रख सके। वो
1: जी
0: आपकी ज़ात है कि आप अदालत में हमेशा बहैसियत जज
1: जी जी
0: बैठते हैं और हमेशा ये कहते हैं मुकदमे को मुकदमा नहीं कहा, आपने मुकदमा कहा।
1: क्या बात है, आपने बहुत मतलब बारीकी से उस चीज़ को देखा और उसको आपने जिक्र
0: जा
1: किया रज़ा मुराद साहब से,
0: जा
1: उनके वालिद की
0: हाँ
1: बात कर रहे हैं हम,
0: जा रज़ा मुराद साहब, रज़ा
1: उनके
0: मुराद साहब का,
1: रज़ा
0: जहाँ
1: मुराद साहब के वालिद
0: वाली
1: वो
0: साहब
1: जज
0: की,
1: का रोल अदा करते
0: जा
1: थे,
0: जज
1: और उन पे
0: का,
1: वो जज का रोल बहुत ही खूबसूरत लगा करता था, वो जज का
0: जा
1: रोल ऐसा
0: जा
1: लगता था कि असलियत में शायद जज हैं ये।
0: वाकई ऐसा ही था।
1: जी
0: उन्होंने मुझसे खुद यह कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे कहीं कहीं तलफ़ुज़ सही कराना पड़ता है दूसरे लोगों का, इसलिए कि बेहतरीन क़स्म के वो उर्दू नवाज़ भी थे
1: जी
0: और उर्दू जानने वाले भी थे।
1: जी बिल्कुल
0: अच्छा, जहाँ तक आपने मुराद रामपुरी का नाम लिया,
1: जी
0: तो रज़ा साहब के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ कि उनकी ज़िंदगी का पहला स्टेज ड्रामा रामपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन घेर नज्जू
1: घेर
0: खां
1: नज्जू।
0: में हुआ।
1: डॉक्टर साहब ये तो रही बात, बात कर रहे हैं हम रेडियो की, डॉक्टर साहब आपने रेडियो पर कुछ फीचर भी लिखे?
0: जी हाँ,
1: जी
0: ड्रामों में मैंने बाकायदा बोला भी हूँ
1: अच्छा
0: और ड्रामे लिखे भी हैं,
1: अच्छा
0: और ड्रामे में आवाज़ भी आपने दी है
1: जी जी बिल्कुल।
0: कहीं कहीं किरदार के ऐसे ऐसे।
1: तो हमारे लिए डॉक्टर जहीर अली साहब यानी कि खुशनसीबी की बात यह है कि आपने रामपुर में वो दौर देखा जब ये स्टेशन कायम हुआ।
0: जी हाँ, मैंने वो दौर देखा जब वो पनवड़िया में
1: जी
0: सबसे पहली बार जब वहाँ पर कायम हुआ, तो अशफाक आलम खां इंजीनियर,
1: अच्छा, यानी
0: उन्होंने
1: उस दौर में जो पनवड़िया में यहाँ रामपुर में स्टेशन जो कायम हुआ पनवड़िया, तो
0: पनवड़िया में हुआ पहले,
1: उसमें वहाँ पर इंजीनियर थे वो जिनका जिक्र कर रहे हैं
0: नहीं
1: आप,
0: वो इंजीनियर की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर कायम किया।
1: कायम किया था।
0: उन्हें वो तो शायद उस वक्त बनारस में या किसी और जगह थे, तो
1: अच्छा
0: उन्हें बुलाया गया
1: बुलाया
0: था
1: गया था।
0: नवाब साहब ने अपने असर रसूख से
1: जी।
0: और अपने ताल्लुक़ से उन्हें बुलवाया था, और बुलवाने के बाद यहाँ पर यह कहा था कि भाई अब आप इसे देखें और इस पर अब काम करें,
1: वो स्टेशन
0: का
1: कायम कराया,
0: वो स्टेशन कायम कराया।
1: यानी रामपुर वालों को ये खुशनसीबी हासिल थी कि वो रेडियो जो थे वो सुना करते थे और कायम हुआ। आसपास के ज़िले थे यानी मुरादाबाद और बरेली भी बड़े ज़िले थे, लेकिन रामपुर में स्टेट था, नवाबी थी यहाँ पर, तो इसलिए नवाब साहब ने वो स्टेशन यहाँ कायम कराया और आसपास के जो ज़िले थे वो सब कवर किया करते थे,
0: या
1: सुनते थे लोग रेडियो।
0: मुरादाबाद के लोग तो बहुत, मैंने खुद देखा कि वहाँ एक जगह है पाटा नाला, तो
1: अच्छा
0: नाले के पास लोग खड़े होकर बाकायदा रेडियो को यहाँ के सुना।

0: करते थे मैंने
1: जी जी जी
0: अपनी
1: बिल्कुल
0: आंखों से देखा।
1: डॉक्टर साहब, आपने दौर देखा और यहाँ पे जो अनाउंसर रहे, यानी पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, जो मशहूर हुआ करते थे, मोहम्मद अली मौज साहब थे, अंजलि
0: हाँ
1: वाजपेयी जी थी, और भी बहुत सारे थे, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपने वो दौर देखा तो सुना होगा उनको, लोग रहे हैं यहाँ पर, अनाउंसर रहे हैं, फिर उसके बाद वो अफसरान भी रहे।
0: देखिए, अंजलि वाजपेयी जी तो बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करती थी,
1: जी
0: और मौज साहब जो थे वो तो खुद बतौर खुद शायर भी थे।
1: जी बिल्कुल
0: उनका एक बड़ा मशहूर शेर था
1: जी
0: जो उन्होंने किसी ड्रामे में खुद कहा था
1: जी
0: कि जिल्ले सुभानी आज भी ताली बजा के देखते हैं,
1: जिल्ले सुभानी, आज भी
0: आज
1: ताली
0: भी
1: बजा के
0: ताली बजा
1: देखते
0: के
1: हैं।
0: देखते हैं,
1: जी
0: कि वो ये समझते हैं कि मैं आज भी बादशाह हूँ। ये उनका शेर जो है ये ज़रबुल मिसाल है
1: जी
0: जो मुझे आज तक याद है।
1: मैंने सुनी है बचपन में कि उनकी आवाज में ऐसा था कि लोग खींचे चले आते थे, जैसे
0: बिल्कुल खींचे चले आते।
1: अगर वो कहीं महफिल में हैं तो भीड़ लग जाया करती थी। मैंने देखा है कि रेडियो का कोई भी बंदा, एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैंने बचपन में, मुझे याद है कि किसी जगह अगर महफिल में कोई आ गया है, रेडियो स्टेशन पे है भाई, रेडियो पे है, तो उनके आसपास भीड़ लग जाया करती थी, जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती आ गई।
0: ऐसा ही था कि उनकी आवाज़ को सुनकर लोग खींचे चले आते थे।
1: जी बहुत अच्छा रहा हमारे साथ में, अच्छी गुफ्तगू रही आपकी, आप यूं ही हमारे सामने को अपनी दुआओं में याद रखें, और कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि 90 साल हुए हैं, बेमिसाल 90 साल, उसके बारे में हमारे सामीन को कोई पैगाम दीजिए।
0: पैगाम यह है कि रेडियो को लाजमी सुना करें, इसमें तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं, उससे मालूमात में इजाफा होता है और बोलने का तरीका भी आता है कि किस बात को अदा हम किस अंदाज से करें। बहुत बड़ी बात है।
1: शुक्रिया, बेमिसाल 90 साल, इस उन्वान के तहत आज हमने मुलाकात की डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब से। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, लीजिए सुनिए लक्ष्मीबाई राठौर के स्वर में ये भजन।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोप वे की 65 केबिनों में से 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा।

0: इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं लहरी लाल जी यादव और सावित्री श्रीवास्तव। पहले आपको सुनवाएंगे लहरी लाल जी यादव के स्वर में देवी गीत।

अभी आप लहरी लाल जी यादव और साथी के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए सावित्री श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत।

अभी आप सावित्री श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोकमाद्री कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: AIR at 90.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा।

0: है।
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी,
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी,
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिट

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल ठीक
5: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि

0: अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जेरापुर, जय भारत।
2: जय जेरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह।
4: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
7: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
7: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
7: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
7: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
8: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
9: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
7: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
9: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
7: देखिए निजाम साहब।
9: जी फरमाइए।
7: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
9: जी।
7: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
9: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
7: जी।
9: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
10: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ,

0: जिरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
1: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
3: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
1: लेकिन जरा होशियारी से।
3: जो हुकुम सरकार।

0: John Abbott!
1: What
0: how? Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko aadhi raat mein aise kayron ki tarah giraftar karte ho? Sharm nahi aati tumhe? Himmat hai to humse lad kar dikhao. Aao samne.
0: Bout ho gayi tumhari bahaduri. Fauja!
2: Huzoor!
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से
2: जी
3: हाँ छोड़ो मुझे
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे मुझसे हाथ हटाओ मैंने कहा छोड़ो मुझे हटो यहाँ से
0: शाबाश शाबाश सारल जंग मैं खुश हुआ तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
4: हुजूर
1: अच्छा तो ये सब इसकी कारस्तानी है एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है लानत है तुम पर सालार जंग लानत है लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था
0: फौजियाओ ले चलो इसको
3: छोड़ो मुझे चलो हाथ हटाओ छोड़ो मुझे
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए तरह तरह के लालच भी दिए गए लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे
7: देखो जोरावर अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा
1: अप्पा ये नहीं हो सकता
7: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम बात मान लो मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा
1: ये नामुमकिन है
7: व्हाई
1: हमें माफ कीजिए हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते हम देशद्रोह नहीं करेंगे हरगिज नहीं करेंगे
7: या।
1: अप्पा साहब अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है
7: तो नहीं मानोगे देखो देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें ये सजा
1: अप्पा साहब हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए हमने जो किया हमें उस पर गर्व है कैद फांसी या काला पानी इनमें से कोई भी इतना भयंकर

0: कर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं राजेश खन्ना। आइए सुनते हैं इन पे फिल्माए गए प्यारे प्यारे से नगमे।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी के सफर में गीत आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार की आवाजें थी। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा।

सौतन, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेश खन्ना एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक व निर्माता थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। वे नई दिल्ली लोकसभा से 5 वर्ष 1991 से लेकर 96 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में हुआ। इनकी मृत्यु 18 जुलाई 2012 में हुई। एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक व निर्माता थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। उन्होंने कुल 180 फिल्मों में काम किया, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई।

कटी पतंग यह फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, आर डी बर्मन ने तर्ज बनाई है। राजेश खन्ना की प्रमुख फिल्में हैं 1971 में आनंद, 1969 में आराधना, 1990 में स्वर्ग, 1983 में अवतार, 1973 में दाग, 1971 में हाथी मेरे साथी, 1970 में कटी पतंग, 1971 में दुश्मन, 1969 में दो रास्ते, 1983 में सौतन, 1972 में बावर्ची, 1974 में अजनबी, 1976 में महबूबा, 1974 में आपकी कसम, 1970 में सफ़र, 1971 में अंदाज। ऐसी कई प्रमुख फिल्मों राजेश खन्ना ने दी है।

अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार कार्यक्रम। आज के हमारे कलाकार थे राजेश खन्ना। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत है फिल्म कृष्णा कॉटेज से।

लीजिए, आप सुनिए मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म से ये गीत। उदित नारायण की आवाज़ है, अनुराधा पौडवाल के साथ। दीप कोहली ने गीत लिखा है, अनु मलिक ने तर्ज बनाई है।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

बंटी और बबली, ये है इस फिल्म का गीत शंकर महादेवन की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं, जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस,

0: सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Foreign Minister of Australia Penny Wong, and Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He underlined that as democratic nations, they also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: Dr. Jaishankar said bilateral exchanges were devoted to the current state of the world and these 4 nations focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. He said the maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, and disaster relief.

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय, अब से थोड़ी ही देर में सुनिए यानी कि 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दर्शन सिंह का क्लैरिनेट वादन। 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पे बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट, इसके अंतर्गत सुनिए शशि जैन के गाए लोकगीत। 2:30 लोकगीत का कार्यक्रम होगा। आज के कलाकार होंगे जगदीश यादव और साथ ही रेणु राज सिंह। 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम सुनिए, इसके कलाकार होंगे कुंवर सिंह व साथी। 5:15 पे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी, आज के प्रेरणा पुंज होंगे काजी नजरुल इस्लाम। 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, इसके अंतर्गत सुनिए बाबूलाल दिवाकर से लोकगीत।

शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता महाभारत से शाश्वती प्रासंगिकता। 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, इसमें कलाकार होंगे अनिल कुमार। रात 8:00 चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा, रात 8:30 पे सबरस सुनिए। रात 9:30 पे प्रायोजित कार्यक्रम होगा उर्दू के फ्रॉग में नॉवेल योगदान विषय पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, वाचन है विनय श्रीवास्तव का।

रात 10 बजे खेल दर्पण में सुनिए अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम त्रिपाठी की भेंट वार्ता। हैमर थ्रो खेल चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित एथलीट चंद्रोहण नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत प्रस्तुति होगी अभयकांत त्रिपाठी की, जो कि हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

जो आप सुनिए, खोए हुए व्यक्ति की सूचना। दीपक कुमार के सूचना के अनुसार 36 वर्षीय दीपिका चेहरा इनका सामान्य है, आंखें सामान्य है, ऊंचाई इनकी 4 फीट 6 इंच है, रंगोरा है, बाल काले हैं, इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। ये 22 फरवरी 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें। ग्राम स्थल ग्राम वगुरिया भोजपुर थाना को देहांत जनपद प्रतापगढ़। सूचना समाप्त हुई। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफ 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दर्शन सिंह का क्लारोनेट वादन, राग है मुल्तानी।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। इसी के साथ आज के विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा समाप्त।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दर्शन सिंह का क्लोरिनेट वादन राग थमुलतानी मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं, बाबनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर।
0: जी विकास जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विकास जी, आजकल आप कहाँ पर हैं?
1: अभी प्रयागराज में हैं।
0: अच्छा, अभी प्रयागराज में हैं। तो गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: दिल्ली फिल्म का गाना है महेंद्र कपूर की आवाज में।
0: जी जी,
1: एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे।
0: जी, जाने फिर उनसे मुलाकात हो के ना हो। बहुत खूबसूरत सा गाना है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ है और विकास जी की पसंद है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, जिला प्रतापगढ़
0: जी। प्रतापगढ़ से रोशनी जी ने हमें कॉल की है, तो रोशनी

0: जी की पसंद का कौन सा गाना है?
1: मैम गाने के बोल हैं मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना,
0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भाई बहुत सुपर हिट फिल्म रही है ये।
1: जी मैम, ये
0: तो
1: गाना
0: इसी का गाना आपको सुनना है, तो चलिए रोशनी जी सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैडम मालिनी दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा उत्तर प्रदेश के सादा सा प्रेम प्यार है। नमस्कार।
0: नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है श्री 420
0: जी,
1: और गीत के बोल है रमैया बत्ता भैया।
0: बहुत पॉपुलर गाना हुआ था ये
1: जी, काफी अच्छा खूबसूरत गीत है और कई कलाकारों ने अच्छी आवाज दी है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारण हेतु।
0: तो आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए सुनते हैं श्री 420 फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान। गाने को मैं आपको गाकर सुना दे रहा हूँ मैम।
0: जी बिल्कुल सुना दीजिए।
1: नहीं ओ लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुप किस चोरी चोरी हाल इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुप किस चोरी चोरी हाल इंतजार मुझे तेरा।
2: का नाम लेना चाहते हैं
0: जी? अपने परिवार वालों के नाम भी ले लीजिए
1: जी। हमारे पिता रामचंद्र यादव, हमारे मम्मी का नाम है चित्ररेखा देवी यादव, हमारी तीन बहन आंचल यादव, काजल यादव, शिखा यादव, हमारा छोटा भाई अंकित यादव।
0: तो आपको सुनवाया जाए आपकी पसंद का ये गाना।
1: बिल्कुल मैम,
0: लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 1 बजने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में होगा। लीजिए, हम आपको बता दें एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, हम एक बार पुनः आपके लिए लेकर आए हैं आपका मनपसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस बार का विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाले रोग और उनका उपचार। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी शहर प्रयागराज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी। आप अपने प्रश्न दिनांक 27 मई 2026 को शाम 3 बजे से 4 बजे तक फोन

नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला

ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया। गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
1: मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
0: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाज़ो पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को ख़त लिखकर 21 जून को होने वाले NEET UG 2026 के री एग्ज़ाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक़िद करने की अपील की है। जनाब प्रधान ने पूरे मुल्क के सभी वज़राए आला, नायब गवर्नरों और हुकूमतों से इस मुतालिक तआवुन तलब किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव पंचायतों की नई बॉडी तश्कील होने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है। रियासत की गांव पंचायतों के प्रधानों की मुद्दतकार आज खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है। ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी वाज़े किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए। आजमीन हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में औरास थाना हलके के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया। दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानो माल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियासना गुज़िश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैंची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर अजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट।

0: राधा, ओ राधा, देखा पनघटे पे सब बहनी हरन हमें के तोका जो हथी। चला बहनी हरन से राम राम कह लीन जाए।
1: राम राम
0: राम
1: सरस्वती
0: राम
1: बहनी, और अपन पनघर सुने बैठी सब बहनी हरिन का राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: सरस्वती
0: हाँ
1: का हाल चाल है?
0: देखा राधा बहनी, एकदम ठीक हाल चाल बाटे, और तोका देख के हम बहुत खुश हो गई ही आज इतना दिन बाद।
1: देखा पूरा माहौल हियाँ भक्तिमय है, हियाँ सरस्वती यहाँ तो संगम है, राधा आहा जहाँ हुआ कन्हैया आहा। तो देखा अपन कार्यक्रम का नाम पनघट है,
0: हाँ एकदम सही।
1: और जब सरस्वती यहाँ साथ है तो देखा कल रहा गंगा दशहरा,
0: और
1: तो
0: आजो गंगा दशहरा है,
1: हाँ
0: जानत
1: लोग
0: हो कि जौन है जेठ मास का शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि के गंगा दशहरा मनावा जाता है। तो देखा कालो हम सब गंगा दशहरा
1: कुछ लोग कल
0: मनाई,
1: मनाएं कुछ लोग
0: और
1: आज
0: आजो
1: मनावत, आहा
0: मनावा
1: दोनों
0: जात
1: तिथि
0: है।
1: के रहा, काहे से आजकल तिथि का बड़ा हेर फेर होता पंचांग में,
0: हाँ तो
1: तो
0: देखा
1: दो ही
0: हम
1: दिन का
0: सबे
1: त्योहार ज्यादातर मनावा जाता, हाँ तो कल भी मनावागा और कुछ लोग आज भी मनावत आहा। और पता है कितना लोग आस्था के साथ सुबह घर से निकला था, इतनी जेठ की तपती दोपहरी में आके गंगा में डुबकी लगाए के घरे जाता हाँ,
0: बिल्कुल
1: कहीं ना
0: देखा
1: कहीं हिंदू
0: गंगा
1: जोन
0: माता के अवतरण ही यही बदे भयवा कि हम सबे जाने अनजाने जौनो चूक कर दे थी, और उनकी शरण में जाय के गोता लगाए के स्नान कर के हम सबे अपने अपने अनजाने में किए भूल चूक के क्षमा प्रार्थना करती, और वो हम सबे के क्षमा के आश्वासन दे थी, है ना। उनकर अवतरण जौन ये दिन भय रहा। तो देखा ई महान पर्व बाटे, एमा स्नान दान पूजन का अपन विशेष महत्व होता है। तो हम सबे खूब धूमधाम से एका कालो मनाई, आजो मनावा जाई।
1: देखा हिंदू जितना भी पर्व है सब भैया बहनी हरिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनावत हैं,
0: बिल्कुल।
1: और कहीं ना कहीं देखें पहले तो धर्म के प्रति लोग सजग रहबे भेने, लेकिन आज देखें सोशल मीडिया जो ना है इतनी चरम पे है कि कोनो भी खबर कहीं भी रहा था पल भर में उसका वायरल कह देता। पहले जितना एकरे महत्व के बारे में लोग कम जानत रहे ने, आज बच्चा बच्चा जानता है। और पता है गंगा दशहरा पे सुल्तानपुर में एक धपाप कहा थे,
0: अच्छा।
1: जहाँ धोपाप कहा जाता कि हुआ जे दशहरा के दिन नहाए ले थे, जितना भी पाप करे रहा था सब धोई उठा था। तो आज और कल हुआ तो बड़ी भारी भीड़ है, संगम का तो महत्व तो ही है, लेकिन सुल्तानपुर में कहा जाता भगवान राम हुआ स्नान करे रहने, यही
0: अच्छा।
1: बरे हुआ को मान्यता है, लोग हुआ भी नहाए जाते हैं। और पता है गंगा दशहरा के दिन तो हमारे सबके घरे में दाल भरी पूरी बना था।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ ये तो देखा पर्व है तो तरह तरह के पकवान तो बनबाई करी,
1: हाँ
0: है
1: देखा
0: ना।
1: पर्व है तो पकवान है, और कहीं ना कहीं आपका वहा है कि जब जेके व्यक्ति का मन होता अब हर व्यक्ति मन चाहा बनाए खा लेता, लेकिन हर चीज़ पहले पर्व से यह लिए जुड़ा रहा कि प्रतिदिन हर व्यक्ति अपने मन चाहा भोजन नहीं बनावत रहा, तो पर्व का इंतजार करत रहा कि ई
0: काहे कि
1: त्योहार आवत
0: देखा।
1: है तो ई पकवान बने और बड़े चाव से खावा जाए, सबका इंतजार रहत रहा।
0: बिल्कुल सही कहो तू राधा बहनी, और अपन हम सब बनाए के चाव से खाइबो करती और दूसरे के खियबो करती, दानो करत ही, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: खुशी और बढ़ जात है ना।
1: बिल्कुल खुशी बढ़ जाता है, लेकिन महिलाएं जो यहाँ वो दूसरे ख्याल रखत रखत अपने मन की बात सुना भूल ही जातीन, आपन ख्याल ना ही रख पौतीन, यहो बात तो है।
0: तो चला हम सोचे थी आज यही बात पे चर्चा कर लें जाए कि महिलाएं कभी तो सुने मन की भी बात।
1: तो हम तो कहा बहनी हरे देखा घर परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमार, लेकिन उकरे साथ साथ अपने प्रति भी थोड़ा सजग रहें, थोड़ा सोचें, कहे से कि अगर आप अपने प्रति न सोची हैं, अगर आपन हाथ पांव सलामत आए तो दुनिया साथ देता, अगर ना आए तो क्यों साथ ना देता है। ए लिए कितनों बिजी हुए कितनों व्यस्त हुए, लेकिन अपने लिए समय ज़रूर निकालें, अगर कोनो इच्छा आपका अधूरी रह गया है आपके पास अब समय आए तो ओका पूरा करें। कभों कभों वो था ना कि लड़कियन के साथ साथे अपनों जीव कहा था कि हमहू लड़किया की ना ही खेली, लड़किया की तरह अपन जौन कुछ सपना पीछे रह गया है, लड़कियन हमारे आगे बढ़ाता हाँ, तो उनके साथे साथे हमहू कुछ करे चाहिए तो कई ली। तो हर महिला की सोचे के चाहिए थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकाले चाहिए, ई ना सोचे कि ठीक है घर परिवार में सब सुखी यहाँ तो हमहू सुखी यही, ठीक है सही बात है, सब सबके सुख में आपन सुख खोजब बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी सोचब ओसी ज्यादा अच्छी बात है।
0: और राधा बहनी देखा हम सभी आधी आबादी के नाम से संबोधित करी जाती, तो
1: बिल्कुल
0: जब
1: सही बात
0: आधी
1: है,
0: आबादी अपने सपना के

0: अपनी इच्छा के मार डाली तो देश की तरक्की कैसे हुई? हम सभी तक कोना कोना में एक एक जने सोच भाई चला परिवार आगे बढ़ा थे, बेटा बेटी आगे बढ़ गए, मनई घरे के आगे बढ़ा थे, बहुत है। लेकिन देखा ये एक होता जिंदगी काटब और एक होता जिंदगी की खुशी से जियब, है ना।
1: देखा काटे जीना चाहे जिंदगी खुशी से जिए चाहे,
0: हाँ वह हमारे कहे के मतलब है कि देखा जिंदगी काटब तो बहुत आसान है, कट सब कर कट जात है, लेकिन अपनी इच्छा के अपने स्वप्न जौन स्वप्न देखे है जीवन में, है ना, और जौन हमारे माता पिता जौन स्वप्न हमारे सभी के बदे देखे हैं और तो ओका जब पूरा हम सभी कह ले थी तो मन में एक अलग से सुकून आवत है और लगत है कि देखा हमों को जीवन में पाए है, एक भाव आवत है प्रगति के, एक जौन उद्देश्य रहा था जीवन के जब ओका पाए लेते ही और ओकरे बाद में जीवन आत्मविश्वास से भर जाता है, एक साधारण जीवन से हटके एक अलग तरह का जीवन हो जाता है। बाकी तो जिए के तो सब जियत बा।
1: देखा कई बार ऐसा होता कि हम बहनी दूसरे खुश करे भरे अपन जोन भी जरूरत है जोन भी सीमा है तय कर ले थी कि ऐसे आगे हमका नहीं बढ़ेगा है, लेकिन ऐसा ना करें। काहे से कि दुनिया में कोनो भी ऐसा व्यक्ति ना है ना कि जे आपसे दुखी ना हो, क्यों ना क्यों जरूर रहे, कथी ना कहीं आपके अंदर वो कमी निकाल दे, तो कम से कम अपने लिए सोचे तो सही,
0: बिल्कुल
1: अपना समय तो दें।
0: अक्सर कहा जाता ना घर में जो लड़की लोग होते हैं और महिलाएं होती अक्सर उनके बदे जो है उनकर पिता या भाई अब विवाह के बाद में उनकर पति सोचते हैं, वो फैसला लेते हैं। तो देखा कई बार वो सब जौन हमारे भीतरी इच्छा छिपी बाटे, हम सब कबो कबो पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते या संकोच के चलते बताए नहीं पावती अपन इच्छा, या बतावत भी है तो वो लोगन के लगत है कि देखा एका पूरा करब थोड़ा काहे कि लड़की है तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाए। तो देखा ऐसे में हमके भी अपने जौन हमार लक्ष्य है ओकर प्रति रुझान और प्रयास दिखावे की पड़ी। जब परिवार वाले देखा थे कि इनका इतना रुझान इतना लगन है तो परिवार वाले भी साथ देवे लगत हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखें वही हम कहे ना कि अपन जौन इच्छा है ना ओका दबावे ना ओका प्रबल करें और अपन जौन भी समस्या है ओका साझा करें। जब आप साझा करी है तबे समाधान हो, कहे हर समस्या का समाधान है और निदान है, लेकिन जब समस्या बताऊबे न करी है समाधान कैसे हो, तो कोशिश करें आगे बढ़ें। काहे से कि जब महिला उन्नति करते प्रगति के रास्ते पे चला था तो दुई घर का विकास होता साथ साथ पूरे राष्ट्र का विकास होता, इसलिए बेटी का शिक्षित कर बहुत जरूरी है। शिक्षा तो खैर सबके लिए जरूरी है, काहे से कि मानव जीवन बड़ा अनमोल होता और जो शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ा संस्कार के साथ आगे बढ़ा वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में अपन बड़ा योगदान देता।
0: मर्यादा में रह करके जिसे परिवार के तकलीफ न होए और मर्यादा में रह के भी बहुत अच्छे से अपनी इच्छा के पूरा करा जा सकत है। तो अपनी इच्छा के पूरा करे कहा जाता ना पराधीन सपने हो सुख नाही,
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: बात, बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: देखा
1: बात।
0: अपनी इच्छा के अपने रुझान के समझें और आजकल तो महिला अलग अलग रोजगार में अपन प्रयास करती और कितना आगे बढ़ती और अपने जीवन अपने ढंग से जियती और बार बार हाथ फैलावे से भी बच जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। देखा कि बहुत सी ऐसी चीज होती है जो उनकी हमारी इच्छा हो था कि ये चीज कर ली, लेकिन कभी कभी हम मजबूर हुई थी कैसे करी, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर हो भाई और प्रयासरत हो भाई अपन जोन भी मुकाम आए जोन भी इच्छा अगर ओका हासिल कर भाई तो हम केहू के ऊपर आधा मतलब केहू निर्भर न रह भाई, केहू इंतजार न करब कि ओ वही है तभी काम होए, जोन इच्छा होए ओका हम कह सकी थी।
0: और राधा बहनी हमेशा ई न सोचे कि हमार सपना न पूरा हो सकी अब तो सब खत्म हो गया। देखा ओके करे बदे जब तुहार परिवार तुहार देखी कि तुहार कितना मन बाटे ओमे, है ना, तू ओमा लगी रहबू अनवरत प्रयास करबू तो भले तू 100 में 100% न कर पावा लेकिन 75% 50% तो तू पाई जाए।
1: बिल्कुल देखें अगर हम 50% करत ही ना तो 25% हमारा परिवार साथ दे जाए तो 75% ऐसा हो जाए, फिर 100% होए में देर न लागे। तो इसलिए देखें अब गौनई सुनावे में देरी न करें और गंगा दशहरा है और गीत गौनई पनघटेप न हो तो बड़ा खाली खाली लागा था, तो फटाफट एक गंगा गीत सुनाए दे अपने बहनी हरिन का और तुम्हें भी सुनाए दे।
0: चला सुन लीन जाए शशि गौड़ से एक ठीक गंगा गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: सरस्वती, देखा अब वही हम बात करते हैं ना, महिलाएं

0: कभी तो मन की भी सुने। तो देखा अपने पनघटे पे एक परिचर्चा है, परिवार समझे महिलाओं के मन की भी बात।
1: अप्रतिभागी हैं जयश्री आर्या, अर्चना साहू, अभिलाषा श्रीवास्तव और रीता रानी। तो
0: तो
1: चला
0: चला सुन लिया
1: परिचर्चा
0: जाए।
1: सुन लीन जाए।
2: देखो बहनी, अरे परिवार केवल साथ रहे का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के मन के समझने, सम्मान देने और भावनाओं को महसूस करने का नाम है।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ।
2: अक्सर बहनी हरे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करत हीन, घर संभालत हीन, बच्चन के चिंता करत हीन, रिश्तन के जोड़ के रखत हीन और सबके पसंद नापसंद का भी ध्यान रखत हीन।
0: बिल्कुल सही कहती
2: मूल
0: हूँ।
2: कई बार अपने मन का बात जो बा वो नहीं कह पाती।
0: देखा जमुना, यह
2: हाँ
0: बात तो सही कहूँ, सबके पसंद नापसंद का ध्यान वो एक जगह से रख लेती,
2: हाँ
0: सिर्फ एक जगह से, एक कोना रसोई से, है
2: रसोई
0: ना।
2: से, हाँ
0: रसोई से वो पूरे परिवार के बांधथिन,
2: हाँ
0: सबके मन के समझथिन, सबके भाव के समझथिन, सबके पसंद नापसंद के समझथिन।
2: हाँ
0: मुना जो महिला पूरे घर के सदस्यन के समझ रही है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, वही महिला के भाव जब कोई नहीं समझते तो कितना पीड़ा होता।
2: हाँ तो देखा यही सब के खातिर, जानकारी लेवे खातिर आज अपने कार्यक्रम में बुलाए बाटी बहनी जैसी जी के और बहनी अर्चना साहू और तू अभिलाषा श्रीवास्तव और हम रीता रानी। तो बहनी हरे आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। तो बहनी हरे आप सबके मन की बात जानने चाहत है कि हमारे बहनी हरन के परिवार से का का जोन बा मिले के चाहे, तब जैसी बहनी आप बताओ।
3: देखिए, महिलाएं अपने परिवार को संवारने सजाने के पीछे रात दिन में एक कर देती हैं। वो सुबह उठते ही उनकी सेवा घर घर में शुरू हो जाती है। अब उसके लिए वो जब रात दिन अपने परिवार की सेवा करती हैं, बच्चों के पीछे समय लगाती हैं, अपने घर वाले के पीछे समय लगाती हैं, तो उनका भी ये एक
0: परिवार का रीढ़ बन जाती
3: हाँ
0: है।
3: ऋण बन जाती हैं। महिलाएं परिवार की ऋण होती ही हैं। वे अपने घर को बनाए रखने के लिए रात दिन मेहनत करती हैं। वे घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के साथ साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य को देखभाल करती हैं।
2: बिल्कुल सही कहूँ बहनी की जौन बा बहनी हरे जौन बा जिसे आप कहीं ना जैसे जी कि बहनी हरे जौन बा परिवार के रीढ़ की हड्डी होती हैं। तो अगर हमार बहनी हरे स्वस्थ हैं तब भाई वो पूरे परिवार का सेवा कर सकत हैं। तब जब हमार बहनी हरे पूरे परिवार का देखभाल बच्चन के बुजुर्गन के सबको करत हैं, लेकिन कभी कभी का होता कि उनकर जौन बा उनके लोग अनदेखा कर देते हैं।
3: हाँ
0: बिल्कुल जमुना बहनी, जब अनदेखा कह देथिन तो सबसे बड़ी बात उनके स्वभाव में परिवर्तन आवे लगत है,
2: बिल्कुल
0: चिड़चिड़ाहट बनकर। तो मने कहथिन जब देखा दिन रात चिड़चिड़ाते रहथिन, लगाए रहथिन घर में लड़ाई झगड़ा, जबकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं होते, वो अंदर का उद्गार होत है जो
2: हाँ
0: गुस्से के रूप में बाहर आवत है।
2: हाँ हाँ हाँ
0: का बहनी आप बताओ।
3: जी देखने में आता है कि महिलाएं मतलब कि सबको देखती हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उनको लगता है कि अरे तबीयत खराब है तो दवा खा लो,
2: हाँ।
3: दवा ना हो गई हो जैसे रामबाण हो गया हो, बस खाया और तुरंत शरीर को आराम मिल गया।
2: बिल्कुल सही कहा थी बहनी।
3: लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या चाहिए, सेवा चाहिए, अपनापन चाहिए, साथ चाहिए, समय चाहिए, ये कोई नहीं देना चाहता
2: जी, जी,
3: है
2: जी, जी,
3: औरतों को, महिलाओं को, ना बच्चे ना आदमी ना घर के भाई बड़े बुजुर्ग तो उस लायक नहीं होते कि उनकी कर सके या वो उनसे करवा सके।
0: बिल्कुल देखा बहनी, अरे सेवा भाव नहीं चाहती, सिर्फ मन का भाव। जैसे अगर बगल में कोई बैठा है तो उनके हिसाब से बातचीत करे, ये नहीं कि उनके पास बैठा है तो सिर्फ उन्हें कामें भर अड़वत रहे, है ना। कभी कदा अपने मन का भोजन तो हमेशा बना था, कभी कदा यहू कह दे जाए आज जो तुम्हें तो पसंद हो वही बनाओ,
2: वही बना
0: है ना, वही हम खावे।
2: देखा अभिलाषा, ये हमरे बहनी हरे जौन बा ना सबसे ज्यादा सम्मान के भूखी रहती। अगर जौन में जैसे छोटी छोटी मने बात करत हैं और उन्हें ये क्यों कह दे कि अरे तू तो ये बहुत अच्छा काम की हो, तो इमें देखा उन बहनी हरे कितना खुश होती।
0: बिल्कुल
3: हर महिला की अपनी अपनी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। वह भी प्रेम, सम्मान और आत्मविश्वास चाहती है। यदि परिवार महिलाओं की बात सुने और उनकी समस्याओं को समझे, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करे, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार होता है।
2: बिल्कुल
3: महिलाओं के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी होती है और उनकी बात सुनना उनके तनाव को कम करने में एक बड़ा कदम हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही देखा बहनी कि देखा

0: जैसे अभी हम सम्मान बोलत रहे तो सम्मान का मतलब केवल शब्द ना ही होते बल्कि होते कि छोटा छोटा उनका व्यवहार उनके संग कैसे व्यवहार किया जाए। जैसे वो कोनो बात करत है तो वो बात करत है तो उनकर बात सुना जाए ना कि उनकर बात बीच में काट दिया जाए या फिर उनकर वो कोनो भी बात कहते हैं तो उनके बात के मैंने छोटी बात ना समझे हो सकत है कि बहुत अच्छी बात बोल दें तोरे परिवार के वो काम में आ जाए और एकरे साथे साथे सबके सामने कभी भी बहनी हन का अपमान न करे के चाहिए।
1: बिल्कुल सबसे बड़ी बात जमुना बहनी ये सोचा कि अगर कोई बात कहथिन तो लोग उनकी बात काट देथिन या उनके बात तवज्जो न देते तो उनके दिमाग में रहता अरे इन्ह का पता ये तो घर में रहथिन चूल्हा चौका से इनको का पता बाहर का दुनिया कैसे चलता। लोगन के मन में ये चीज बैठ जाता और एक भ्रम तोड़े के लिए देखा आजकल की नारी बहुत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और ये भ्रम टूट जाए चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रूढ़िवाद हैं जो ये बना लिए हैं कि नहीं बहनी अरे इनके घर गृहस्थी से मतलब बटे बाहर से नहीं ये चीज के तोड़ा बहुत जरूरी है। कहा कि देखा एक बहन को नीचे दिखा वाली अपने परिवार की दूसरी बहनें लोग होती
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी जी जी जी माँ बहन बेटी जैसे कुछ कहना चाहती है अक्सर उनके बोलने को बेवजह का बोलना कहकर एक रीत सी बन गई है हमेशा क्या बोलना चाहती हूँ बेवजह की बात बोल रही हूँ। अरे वो बेवजह की बात नहीं बोलती वो अपने लिए कभी वो कुछ नहीं बोलती है जो भी बोलती है आदमी के लिए घर परिवार के लिए उनकी आवश्यकताओं के लिए बच्चों की जीत के लिए उनके मान मनहार के लिए
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: जब भी वो बोली है तो घर परिवार से ही संबंधित बोलती है लेकिन फिर भी उनके बोलने को हमेशा कहा जाता है कि फालतू बोलती हो तुम ज्यादा बोलती हो हमेशा चार लोगों के सामने आदमी हो गए औरतों के भाई वो दूसरे घर का काम कर रही है काज कर रही सब कर रही है लेकिन आदमी उनको झिड़क देते हैं डांट देते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि उसको भी चार लोगों के सामने कितना खराब लग रहा
1: है। बिल्कुल सही बात है। और बताएं बहन आप
3: देखिए ये तो आप बिल्कुल सही बताई महिलाएं अपने परिवार को बनाने के लिए रात दिन एक करते हैं उनकी सारी चिंता यही लगी रहती है कि मेरी तबीयत जैसे खराब है तो अब हम कैसे अपने परिवार की कैसे देखभाल करें सबकी सेवा कैसे करें उनकी तबीयत वो अपने बारे में नहीं सोचती वो अपने परिवार के बारे में परेशान रहती है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे
2: कि दवा खा ले रात में हम सुबह ठीक हो जाए सुबह मुझे नाश्ता बनाना है बच्चों के टिफिन बनाना है ऑफिस जाएंगे ये इनके लिए देना
3: ये सारी चिंताएं अपनी बहनों की ही लगी रहती है लेकिन परिवार उसको गलत नजरिए से देखता है उसको गलत शब्द यूज करता है।
0: बिल्कुल सही कहते हैं बहनी कि देखा का होता ना कि हमारे बहनी हरन के मन में भी बहुत सारी बातें होती
1: बिल्कुल सही कहते हो
0: लेकिन उन्हें सुनने वाला क्यों नहीं होता
1: कारण ये है ना बहनी देख वैसे तो लोग मन की बात सुनने के लिए अपन रेडियो घुमाए देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात है ना लेकिन देखा अपने घर की जो गृहिणी गृह मंत्री के रूप में है उन्हों के मन की बात सुनने के चाहिए उन्हों के समझे के चाहिए है कि नहीं कहे से कि देख कहा जाता ना मन का जो बोझ होता ना वो बात करे से ही हटा था नहीं तो एक दूसरे के बीच में दूरियन का वो लकीर पैदा हो जाता जो एक ही घर में तो रहा थी लेकिन वो दूरी के फिर कभी भर नहीं पाते।
0: देखा एक चीज ये होता है ना कि जब हमारे बहनी अरे कोनो काम करत हैं तो उन्हें रोका टोका नहीं उनकर मजाक मत उड़ावा हाँ और वो जौन भी कुछ करे चाहते हैं ओके जौन वा करे दे तब तो जौन बटे सब अच्छा बा और अगर तू वो बेचारी कोनो काम भी करत हैं और तुम में रोका टोकी लगाए है तो उनका मनोबल जौन बा घट जाता है।
2: पुरुष वर्ग ये चाहते हैं कि जैसा हम चाहे वैसा वो काम करें
0: हाँ, हाँ,
2: हाँ? हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह जो कहना चाह रही है वो आप ही के लिए मतलब आपके हिसाब से आप ही के लिए है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है।
0: जी, जी, जी,
2: कभी कभी ऐसा होता है कि वो आदमी बच्चों से ना कह के अपने बहन से जेठानी देवरानी घर में किसी से बात करती है तब भी बच्चों को लगता है कि मम्मी आप कितना बोलती हो आदमी लोग कहते हैं यार तुम कितना बोलती हो तुम लोगों की बात तो खत्म ही नहीं होती फालतू की बात ये अरे वो किससे करने जाए अपने मन की बातें
3: सही बोल रही है। देखिए वो नहीं समझ पाते बहने लोग असल में अपनी जब बात किसी और से कह देती हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है उनका शरीर हल्का हो जाता है और अब समय के साथ साथ महिलाएं में काफी सोच में काफी बदलाव आया है और आज वो अपनी क्षमता के अनुसार हर क्षेत्र में हर अपने हिसाब से वो काम कर रही हैं और यहाँ तक कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मतलब आर्थिक समस्या को भी निपट रही हैं उसकी मतलब घर के खर्चे पूरा करने के लिए बहुत रात दिन मेहनत कर रही हैं।
0: मैं कहा कहे मतलब जैसी बहनी ये हवे कि बहनी हरे जौन बटे अपन बाहर भी निकल के हाथ पैर मारत हैं और हाँ, अपने हाँ। परिवार का सहयोग भी

0: ठीक रूप से करत हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, काहे कि देखा जाता कहीं आजकल के समय में, देखा अभी कहीं आसपास के उदाहरण ले ल, भैया जैसे आजकल बहुत से लोग प्राइवेट काम करत रहथिन और उनकी बहनियरे छोटे मोटे स्कूल पकड़े रहथिन, बीच में कोनो कारणवश अगर भाई लोगन का काम छूट जात है ना, तो उस समय जो परिस्थिति घर के आर्थिक संकट आवत है ना, वो आर्थिक संकट का सहारा वही बहने लोग बनाते हैं। लेकिन ये जोन पुरुषत्व का अहम होता है ना, ये स्वीकार नहीं कर पाते बात के, है ना। वो चीज जो काम करत रही है, सब कुछ करत रही है, लेकिन जो उनके बाहर वही काम को उन्हें बाहर इतना अच्छा से उनके समझा थी लोग कि हाँ पिती मेहनत, लेकिन घर में उनकी मेहनत के कोई भी नहीं समझते। सुबह उठ के भोजन पानी खाना बच्चन का टिफिन बनाई के जई है, फिर शाम के आए के उतने काम करे के है।
2: देखा सत्या, लोग कहा थे ना एक गांव में हमसे सबके अपने कहावत बटे कि घर की मुर्गी साग बराबर,
1: बिल्कुल
2: है ना। तो देखा हम सब कितना भी काम करी, हम सब के बाहरी आदमी तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन अपने घर में का होता है कि नहीं तू जौन बटे ये तो घर का काम हो, माजना धोना बनाना खिलाना ये तो घर का काम होता है। देखा बहनी हरन का भी एक सपना होता है, उन्हों सपना देखा थी कि हम पढ़ाई पूरी कर ले, नौकरी कर ले, अगर उन्हें सबके कोनो कला आवता है जैसे सिलाई है बिनाई है कढ़ाई है, तो अगर वो अपन कदम बाहर निकाले चाहत हैं, अपन जौन ज्ञान सीखे हैं वो बांटे चाहत हैं, तब घरे वालन के ओके स्वीकृति दे दे
1: करे के चाहिए। बिल्कुल मनोबल देखा, ये जरूरी नहीं ना कि आप पैसे से और हाथ पैर चलाए के उनकर मदद करें, मनोबल का ही सहयोग बहुत बड़ा होता है। कहा जाता है अगर उनके ये कहें कि हाँ काम करे, काम करे में आदमी के थोड़ा समय लगा था लेकिन वो आगे बढ़ा थी, फिर
3: धीरे धीरे सीखते
1: हैं, तो उनके मनोबल के बढ़ाव बहुत जरूरी है। एक विषय में आपका कहा था मैं
3: जी, मनोबल बढ़ाना जरूरी है, तभी तो वो आगे निकलेंगी घर पे, घर का काम करने के बावजूद फिर वो बाहर निकलेंगी, धीरे धीरे करेंगी। किसी भी नए काम को करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब बाहर वो निकलेंगी तभी तो वो करेंगी आगे, उनका मन लगेगा। पहले भी वो सोचती रहती हैं, लेकिन शादी के बाद घर परिवार बच्चों में वो नहीं कर पाती हैं और उनकी वो रुचि धीरे धीरे थोड़ा सा कम भी हो जाती है, और लेकिन जब वो बाहर निकलती हैं तभी तो वो आगे कुछ करेंगी।
4: एक चीज इसमें देखिए और मतलब कहना है कि जैसे महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो होता क्या है कि उनको अब काम की वजह से कहीं जल्दी कभी तो समय से आ जाती हैं, कभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो जब वो लेट में आई तो परिवार में घुसते ही मान उनको ताना कसी उनको सुनने को मिलने लगता है।
1: देखिए ये सब चीजें अगर ना रहे परिवार में तो वो परिवार बहुत खुशहाल रह सकता है। हमारे कहे के मतलब है कि हम अगर अपने माता पिता के सामने खुद की पत्नी के सम्मान न करवाए, उनके भाव के न समझवाए, तो जाहिर सी बात बा हमारे माता पिता भी वह सम्मान न देंगे हैं वो हिसाब से जोने हिसाब की वो बहु हकदार है सम्मान के। और यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे रहते वो बड़े होते घर से ही सीखा थी, फिर वो भी अपने माँ के सम्मान नहीं देते हैं, वो सम्मान नहीं देते जेके कारण जोन बाटे बहनी आगे अगर बच्चा वही आदत में पल बढ़ के बड़ा हो जाता तो जब उनकी शादी होता तो वो समस्या फिर से उत्पन्न
2: होता। और देखा सत्या कि जैसे बहनी अरे बाहर नौकरी करे जात है, तो देखा भाई हम कतो ऑफिस में दफ्तर में नौकरी करे जात है, तो हमें जौन बटे वहाँ के हिसाब से चले पड़े, जब हमें वहाँ छुट्टी मिले तब हम घर आ सके थे, तो अगर वो देर से आवत है तो परिवार वाले की ये चीज जौन पर समझे के पड़े।
1: देखा बिल्कुल, अगर एक गृहिणी घर से बाहर काम कर रहे हैं तो हर परिस्थिति के लिए इंसान के तैयार रहना चाहिए। और हमें लगा था कि आज के पनघट्टे पर ही जो परिचर्चा है ये बहुत अच्छे ढंग से है, और हमारे बहनी हरे अगर सुने हुई है तो ऐसे सीखी है कि जौन बटे एक घर के गृहिणी के बाहर तक के माहौल में मानसिक रूप से कैसे अच्छे से सजग के लिए, कैसे मजबूत करे के लिए कह तरीके से सहयोग का आवश्यकता होता।
2: और देखा सत्या कि बहनी हरण के कभी भी जैसे बहू में बेटी में अंतर न करे के चाहे, जैसे बहू है ऐसे बेटी है,
1: बिल्कुल
2: हाँ। तो अगर ऐसे करही तो जौन बा उ परिवार में एक समानता बनी रहे और वहाँ बात बिकड़े को कोनो सवाल ही न रहे। तो कुल मिलाए के बाटे कि बहनी हरे परिवार में है तो हमारे घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग है जो भी बड़ा लोग हैं तो वो लोग जौन बा बहनी हरे के सम्मान दें, उनके बात के समझें और ऊपर अमल करें। तो देखा बहनी हरे हमारे कार्यक्रम में आईं और इतना निक जानकारी दीन, एक लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: राधा, देखा कितनी बढ़िया परिचर्चा रही ना, कितने अच्छे से बतावा गया कि सब महिलाएं के एक ही शिकायत हवे कि देखा हम सबे के बात नहीं समझी जात है ना। तो ज़रूरत ई है कि हम सब समझें कि घर की दूरी दूरी जौन है एक ठे महिला होत है जौन हम सबे के संहारत है। अगर वही दुखी रहे, नाराज रहे, तो ओकरे काम में वो बात ना आ पाए और वो तरह के सहयोग न कर पाई परिवार में जौन वो ताकत रखत है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो चले अब एक ठीक हो नहीं हो जाए गंगा गीत सुनावत यहाँ ससी गौर।
0: चलो सुन लीन जाए।

0: सरस्वती लहरे तोरी गंगा बड़ी नीक लागे।
1: देखा गंगा दशहरा आज हम सभी मनावत ही तो पनघटे पे बढ़िया बढ़िया गीत भी सुनावत ही हुई खाते, है ना?
0: लेकिन सरस्वती देखा घर में का है ना, आजकल हम लोग सब्जी लाई थी तो गर्मी का मौसम आज जल्दी से सूख जाता।
1: बिल्कुल।
0: तो आज कहे ना रसोई घर से अपने बहनी हरन से बात बात कही कही लेन जा है कि सब्जियों को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें।
1: हाँ देखा इतनी धूप है, इतनी गर्मी है कि कौनो सब्जी लियावा और सवेरे से संझा ना आई हो तो एकदम मुरझाई जाते
0: हैं। बहनी देखा वो तो सब्जी आए हिया मनई कुम्हलाई जाता है
1: तो देखा,
0: फिर सब्जी तो आप पेड़ में से तोड़ के लाया के रखे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तू तो राधा, जल्दी से बतावा कि सब्जी के ताजा कैसे बचाए के रखा जाए।
0: देखा अक्सर लोग लावा थे ना सब्जी के बाजार से सीधे फ्रिज में रख देते हैं और पन्नी से ना खुलते हैं तो उमा नमी रहा था जो उन पत्तेदार सब्जियां होती या जिमा पानी लगा रहा तो धीरे धीरे ना सड़े लागत थी। और तो कोशिश करें कि जब सब्जी बाजार से लावें तो उनका सबसे पहले अच्छे से धुल लें, जो उनमें सड़ी गली सब्जी हो उनका सब निकाल के अलग कर दें, अच्छी अच्छी सब्जी छांट के पत्तेदार अलग रख लें, हरी मिर्च है टमाटर है आलू है बैगन है गोभी जो उन कुछ है उनका सब अलग अलग करके पानी जब ओका सूख जाए तो ओका पन्नी में या कोनो कंटेनर में ऐसा करके रखें जेमा मतलब हवा न पास होए, तब वो जो सब्जी है ना हरी भरी बनी रहे और लंबे समय तक ताजी भी रहे। तो चला अब एक ठी गीत सुन लिया जाए, फिल्म संगीता है मधुमती जुलमी संग आंख लड़ी।

0: सरस्वती जुलमी संग आंख लड़ी
1: हाँ।
0: इकरे बाद चला एक ईमेल संदेश आए उ सुन लिया जाए। माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमार ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com।
4: राधा देखा अब चले के बेला हो चुकी है, तो पनघटे पे फिर मिला जाए सब बहनी हरिन से। राम राम बहनी हरिन।
0: राम राम बहनी हरिन।
4: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर या आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sancho border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL Qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to

0: वाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में

स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर

0: की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को

0: मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि मुन्नार कुमारकोम निलाक्कल कुमिली सबरीमला वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए एक आवश्यक सूचना सुनिए। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः आपके लिए लेकर आए हैं आपका मन पसंदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस बार का विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाले रोग और उनका उपचार। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी शहर प्रयागराज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तिवारी। आप अपने प्रश्न दिनांक 27 मई 2026 को शाम 3 बजे से 4 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। एक और सूचना है, दिनांक 30 मई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट प्रयागराज में महिलाओं की मानसिक रोग निदान और उपचार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहने वाली रहेंगी मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आज है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन दिन माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा मैया पृथ्वी पर आईं। इस त्यौहार का नाम दशहरा इसलिए है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने के व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप, 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक नष्ट हो जाते हैं। पर्व का महत्व और परंपराएं। पवित्र स्नान इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाते हैं। यदि गंगा नदी जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। दान पुण्य स्नान के बाद अन्न वस्त्र जल और घड़े का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन 10 की संख्या का विशेष महत्व है, इसलिए अक्सर 10 ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। महाआरती शाम के समय हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख घाटों पर गंगा मैया की भव्य आरती होती है, जो देखने योग्य होती है। गंगा दशहरा हमें न केवल धार्मिक रूप से शुद्ध होने का संदेश देता है, बल्कि जल और पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवनधारा है। लीजिए अब सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले प्रतिमा मिश्रा का गाया ये गंगा गीत।

लीजिए, आप सुनिए एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस बार का विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाले रोग और उनका उपचार। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी शहर प्रयागराज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी। आप अपने प्रश्न दिनांक 27/5/2026 को शाम 3 बजे से शाम 4 बजे तक फ़ोन नंबर 0532297042 और 0532242364 पर पूछ सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। लीजिए एक और सूचना सुनिए। दिनांक 30 मई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के मानसिक रोग निदान और उपचार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे मानसिक डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532297062 और 0532242364 पर पूछ सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए हरि गंगा राम यादव और साथी का गाया ये गंगा गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर या आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।
2: शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों

0: श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
1: जी,
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी,
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहां लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी,
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी,
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी,
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कुंवर सिंह और उनके साथी। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये देवी गीत।

0: इसी के साथ धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो आयुष, हम जैसे जब स्टूडियो की तरफ भी आ रहे थे तो हमने देखा कि टेम्परेचर्स आजकल, ये कोई कहने की बात तो है नहीं, सभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा हाई हिट कर रहे हैं। और इसके साथ ये कितना ज़रूरी हो जाता है ना कि हम अपना ख्याल रखें।
1: बिल्कुल, क्योंकि अभी देखो इस मौसम में मुझे तो लगता है सबसे ज़रूरी है जितना ज़्यादा हो सके अपने घर पर रहिए, आम के रसीले फलों का स्वाद लीजिए और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि हम कई बार काम में, अगर कोई काम हम करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि शायद हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, तो अपने आसपास के लोगों को घर में भी याद दिलाते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नहीं कहते हैं हम कि आप शिकंजी पीजिए या नींबू पानी जैसा सेवन करते रहिए, या आपके पास इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनका सेवन करिए, जिससे कि ना बॉडी में जो है आपके वाटर की जो कंटेंट है वो बना रहे और आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने परिवारजनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब अगर हम आपसे इस देश की ताज़ा खबरों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत के उन सनसनीखेज युवा धावक के बारे में जिन्होंने अपनी रफ्तार से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत के उभरते हुए स्प्रिंटर गुरिंदर वीर सिंह की।
0: बिल्कुल दोस्तों, गुरिंदर वीर सिंह जी का जन्म हुआ 24 दिसंबर 2000 को, लेकिन सिर्फ इनकी पहचान एक एथलीट के रूप में नहीं है, वे भारतीय नौसेना में भी सेवाएं दे रहे हैं। यानी एक ओर देश की सेवा और दूसरी ओर देश का नाम खेल जगत में रोशन करना, ये अपने आप में बेहद प्रेरणादायक बात है।
1: बिल्कुल सही कहा सुष्मिता। और दोस्तों, खेल की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि एक सेकंड का सौवां हिस्सा भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है, और यही हुआ गुरिंदर वीर सिंह के साथ जब उन्होंने अपनी रफ्तार से एक नया इतिहास रच दिया।
0: बिल्कुल, 23 मई 2026 को रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह जी ने 100 मीटर दौड़ मार 10.09 सेकेंड्स में पूरी कर ली।
1: और दोस्तों, यह सिर्फ एक शानदार प्रदर्शन ही नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी थी, क्योंकि वे 10.10 सेकेंड की बाधा तोड़ने वाले पहले भारतीय स्प्रिंटर बन गए।
0: आयुष, मैं तो ये कहना चाहूँगी अपने दोस्तों से भी कि ज़रा सोचिए, केवल 10 सेकेंड के आसपास की एक दौड़, लेकिन उसके पीछे कितने वर्षों की मेहनत, अनुशासन, अभ्यास और संघर्ष छिपा है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही साथ हमारे दोस्तों को इससे ये भी हम याद दिला दें थोड़ा सा, इसी संदर्भ में एक और नाम याद आता है, वो है महान धावक उसेन बोल्ट जी का। और दुनिया में 100 मीटर का जो विश्व रिकॉर्ड है वो 9.58 सेकंड का है और वो उसेन बोल्ट के नाम ही दर्ज है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सुष्मिता। और दोस्तों, जब भी भारत का कोई युवा खिलाड़ी या फिर किसी और क्षेत्र में अगर कोई नई ऊँचाइयाँ छूता है तो ये केवल उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड ही नहीं होता बल्कि ये हमारे पूरे देश के लिए एक गर्व का मौका बन जाता है।
0: सचमुच। और गुरिंदर वीर सिंह जी की ये जो उपलब्धि है इस बात से और ख़ास बन जाती है, उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय किए गए 10.16 सेकंड के क्वालिफिकेशन मानक को भी पार कर लिया है,
1: जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे उनके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
0: वाकई, और अब तो हम उनके लिए चेयरअप भी करेंगे कि उसमें भी वो प्रदर्शन अच्छा ही करें।
1: हाँ।
0: और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 2026 एशिया गेम्स जापान के लिए भी अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है।
1: दोस्तों, कई बार हम किसी सफलता का जब परिणाम देखते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं देख पाते, जबकि सच तो ये है कि हर रिकॉर्ड के पीछे सुबह की मेहनत, घंटों का अभ्यास, थकान और खुद को लगातार बेहतर बनाने की एक कोशिश छिपी होती है।
0: और शायद ये जो हम रिज़ल्ट देख रहे हैं ये हमें यही सिखाता भी है कि सफलता जो है वो अचानक से तो नहीं मिलती, वो लगातार जो हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं उनसे ही बनकर मिलती है।
1: और आज के इस दौर में सुष्मिता, जब हमारे तुम्हारे जैसे और भी कई सारे युवा साथी हैं जो बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं, तो ऐसे में गुरिंदर वीर सिंह जी की जो कहानी है वो हमें धैर्य और निरंतर मेहनत का महत्व भी समझाती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि रफ्तार सिर्फ पैरों से नहीं होती, रफ्तार सपनों में भी होती है, और जब सपनों के साथ मेहनत जुड़ जाए तो मंजिल फिर दूर नहीं है।
1: तो आइए गुरिंदर वीर सिंह जी की उस उपलब्धि को हम सलाम करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास को कभी नहीं छोड़ेंगे।
0: क्योंकि हो सकता है आयुष कि अगला जो रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी हो वह हमारे

0: आसपास का कोई युवा हो।
1: बिल्कुल सुष्मिता, मैं तो ऐसे ही उम्मीद करूंगा। और साथियों, ये थी हमारी जानकारी भारत के धावक गुरिंदर वीर सिंह जी के बारे में। तो आइए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गाना।

0: आयुष, हम आज जो है हमारा जो चर्चा का विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम भारत के विकास की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में या तो बड़े बड़े उद्योग आते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें आती हैं, या फिर आधुनिक तकनीक की जो तस्वीर है यही उभरती है।
1: लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि गांव की गलियों में चलने वाला चरखा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, हथकरघे पर कपड़ा बुनता बुनकर, या घर में अचार पापड़ बनाने हुई महिलाएं, ये भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं?
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं कुटीर उद्योगों की बात करेंगे।
1: कुटीर उद्योग यानी ऐसे छोटे उद्योग जो घर या छोटे स्तर पर कम पूंजी और स्थानीय संसाधनों से चलाए जाते हैं।
0: हस्तशिल्प, हथकरघा, मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन, अगरबत्ती निर्माण, लकड़ी का सामान, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब कुटीर उद्योगों की ही पहचान है। और यही सब है कि हम कहते हैं ना, जब संस्कृति अगर हमारी झलकती है तो वो इन कामों में ही झलकती है।
1: बिल्कुल सुष्मिता। और दोस्तों, जब भारत की लगभग 65% आबादी गांवों में ही रहती है, तो ऐसे में कुटीर उद्योग ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं।
0: बिल्कुल, कुटीर उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, विशेषकर महिलाओं को, युवाओं को या कम पढ़े लिखे लोगों को, जो ऐसे उद्योग में आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं उनको, उनको काम भी मिल सकता है और उनके लिए कहते हैं ना, कमाई का एक जरिया खोलते हैं।
1: एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का MSME सेक्टर यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ये देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं और इसमें कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: जरा सोचिए, अगर गाँव में ही रोजगार मिल जाए तो लोगों को शहरों से पलायन नहीं करना पड़ेगा, आखिर उनके लिए कितनी सहूलियत की बात हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा सुष्मिता तुमने। और ये बात सिर्फ रोजगार तक भी सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारतीय संस्कृति और कला को भी एक नई पहचान मिलती है। क्योंकि अब देखो ना, बनारस की सिल्क की साड़ी, कश्मीर के कालीन, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, या भारत के राज्यों में की जो भी प्रसिद्ध कलाएं हैं जैसे मधुबनी, वर्ली पेंटिंग, ये सिर्फ कोई उत्पाद नहीं।

0: हैं। मूंछ की दलिया, जूट के बैग्स और ऐसी ही और भी कई सारी वस्तुएं हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है।
1: कहते हैं ना कि भारत गांव के, जो हमारे जो देश के गांव हैं, वो देश की असली ताकत हैं कुटीर उद्योग की वजह से। जैसे हाथों की कला या परंपराओं की खुशबू और स्थानीय उत्पादों की जो पहचान को एक नई उड़ान मिलती है। और ODOP जो हमारी योजना है, हमारे दोस्तों ने सुनी भी होगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो हमारे कारीगर हैं या घरेलू उत्पाद हैं, वो अगर उनको जो है एक तरीके से प्रमोट हम करते हैं, तो हर रीजनल जगहों पे जो चीज़ें बनती हैं, जो सामान बनते हैं, उनको एक बड़ा मार्केट मिलता है और प्रमोट भी होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कुटीर उद्योग हमारी परंपरा और कला को भी जीवित रखते हैं। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी भारी मांग है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।
0: और सच में आज कई सारे स्वयं सहायता समूह हैं और कई सारे और छोटे उद्योग हैं जिनकी मदद से लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।
1: घर से शुरू होने वाले छोटे व्यवसाय महिलाओं को सम्मान देते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उन्हें पहचान भी देते हैं।
0: और यही आत्मनिर्भर भारत की एक असली तस्वीर है। और अब देखो ना, बड़े उद्योगों की तुलना में कुटीर उद्योग प्रदूषण भी बहुत कम फैलाते हैं, तो क्योंकि इनमें स्थानीय और प्राकृतिक संसाधनों का ही ज़्यादा उपयोग होता है, यानी ये विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार हैं। और हमारे संविधान में भी DPSP के तहत ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
1: और आयुष, अगर हम बात करें तो आजकल सरकार ने भी कई ऐसी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की या मेक इन इंडिया की, तो इन सारे इनिशिएटिव्स से ऐसे उद्योगों को एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिला है, प्रमोशन के लिए भी उनके बहुत सहायता हुई है, लोगों को ज़्यादा काम मिला है। और तो और जैसे कि हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, हमारी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, इन पर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग बनाते हैं अपनी जगह पे बनाते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है उसको सेल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कैसे, अगर जो हमारा भारत है जिसको हम कह रहे हैं कि अब डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो साथ ही साथ हम कैसे अपनी संस्कृति को ग्लोबल लेवल पे लेके आए, ये एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक ऐसा मीडियम बन सकते हैं कि हम सिर्फ शहरों तक नहीं, गाँव तक भी जो लोग हैं जो इन कलाओं में हैं, उनके हाथों में इतनी अच्छी कला है, उसको हम एक ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कला है, आपके कोई गांव की मामी या नानी की कोई अचार की रेसिपी है, या ऐसी जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जिसे आपको लगता है कि आप एक व्यवसाय में बदल सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल ही इस बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए और इसे एक ऊँचे स्तर तक ले जाने का पूरा प्रयास कीजिए।
1: और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट प्रेरणापुंज का, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कवि, लेखक, संगीतकार और क्रांतिकारी विचारक की जिनकी लेखनी में विद्रोह भी था, प्रेम भी था और इंसानियत का संदेश भी। हम बात कर रहे हैं विद्रोही कवि के नाम से प्रसिद्ध काजी नजरुल इस्लाम की।
1: काजल नजरुल इस्लाम जी का जन्म हुआ 24 मई 1899 को पश्चिम बंगाल के आसनमोल के निकट। और दोस्तों, बता दें कि उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी साधारण था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां छोटी उम्र में ही

0: उनके कंधे पर आ गई थी। प्यार से लोग इन्हें दुखू मियाँ कहा करते थे क्योंकि उनके जीवन में बचपन से ही काफ़ी संघर्ष थे, कठिनाइयाँ थीं।
1: लेकिन दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर इरादे मजबूत हों तो वही कठिनाइयाँ इंसान को महान बना देती हैं। और छोटी उम्र में ही नज़रुल मस्जिद में मुअज्जिन का काम भी करते थे, साथ ही उन्हें कविता, संगीत और लोक कलाओं में गहरी रुचि थी। वो अपने पास ही के लेटो नाट्य दल से जुड़ गए, जहाँ पर वो अभिनय करते, गीत लिखते और नाटक तैयार करने में भी भाग लेते थे।
0: और यहीं से उनके भीतर के कलाकार को और लेखक को एक विकास का एक जरिया मिला। धीरे धीरे उनकी रुचि साहित्य और सामाजिक मुद्दों की ओर भी बढ़ने लगी। लेकिन उनका जीवन केवल साहित्य तक सीमित नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और बंगाल रेजिमेंट का हिस्सा भी बने।
1: सेना में रहते हुए उन्होंने समाज की विविधता और लोगों के जीवन को करीब से परखा। लेकिन उनके भीतर ये सवाल लगातार उठता रहा कि आखिर इंसान को इंसान से अलग क्यों समझा जाता है, आखिर भारत को गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ा गया है। यही सवाल ही आगे चलकर उनकी रचनाओं का भी आधार बने।
0: सेना से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारिता और लेखन को अपना माध्यम बनाया। लेकिन उनकी लेखनी केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, उनके अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध की आवाज़ थी। समाज में फैले अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एक तीखा संदेश था।
1: इसी दौरान उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता विद्रोही यानी द रिबल प्रकाशित हुई। इस कविता ने तो मानो पूरे बंगाल में एक नई ऊर्जा भर दी। इस कविता में उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ एक ऐसी क्रांति की आवाज़ उठाई जिसने युवाओं को जोश से लबरेज कर दिया, और तभी से उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाने लगा।
0: दोस्तों, काजी नजरुल जी की रचनाएं जो हैं ये केवल विद्रोह तक भी सीमित नहीं थी। उन्होंने अग्निवीणा जैसी प्रसिद्ध कृति लिखी जिसमें उन्होंने साहित्य जगत की उन्हें एक नई पहचान मिली और उनकी रचनाओं में आग थी, ऊर्जा थी और समाज को बदलने की शक्ति भी।
1: और इसी क्रम में उनकी एक और प्रसिद्ध रचना आई प्रलय शिखा। नाम से ही पता चल रहा है, प्रलय की ज्वाला। इस कृति में नजरुल ने अन्याय और दमन के खिलाफ विद्रोह की भावना को अत्यंत प्रखर रूप में प्रस्तुत किया, और उनकी लेखनी युवाओं के भीतर स्वतंत्रता और संघर्ष की चेतना को फिर से जागृत कर दिया।
0: और शायद दोस्तों यही कारण था कि अंग्रेज सरकार उनकी लेखनी से डरने लगी थी। उन्होंने धूमकेतु नाम की एक पत्रिका को शुरू किया जिसमें क्रांतिकारी विचारों और लेखों की प्रकाशित वो करने लगे थे, और ऐसे ही लेखों से स्वतंत्रता की भावना इतनी प्रबल हो गई कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया।
1: लेकिन जेल की वो सलाखें भी उनके विचारों को कैद नहीं कर पाईं। जेल में रहते हुए उन्होंने राजबंदीर जबानबंदी की ये रचना लिखी और अपने विचार पूरी निर्भीकता के साथ सामने रखे। उन्होंने जेल में लंबी भूख हड़ताल भी की, और यह केवल विरोध नहीं था बल्कि अपने विचारों को सामने रखने के लिए एक साहसिक उदाहरण था।
0: दोस्तों, काजी नजरुल इस्लाम केवल क्रांति के कवि नहीं थे बल्कि वे मानवता और भाईचारे के भी कवि थे, और उनका मानना था कि धर्म और उद्देश्य लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, ना कि उन्हें तोड़ने के लिए।
1: उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं से प्रेरणा लेकर अनेक रचनाएं लिखी। उनकी कविताओं और गीतों में माँ दुर्गा की शक्ति भी दिखाई देती है और खुदा के प्रति उनका समर्पण भी। कृष्ण की गीता और कुरान, इन दोनों में सिखाई हुई जो इंसानियत के संदेश थे, उन्होंने उनको अपनी रचनाओं में रखने का पूरा प्रयास किया।
0: यही कारण था कि वे हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का समर्थन करते थे, और आज जब समाज में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कोई विचार आते हैं तो हमें ऐसे ही लोगों को अपना इंस्पिरेशन लेना चाहिए जिन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा, जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ भी रहा था तो लोगों को जोड़ने की बात की थी। तो इंस्पिरेशन यही सब लीडर्स हैं, और जब हम इनके बारे में बात भी करते हैं तो ना सिर्फ हम ये समझते हैं कि आर्ट ने, यानी कि पोएम्स या लोगों के जो लोग जर्नल्स पढ़ते थे उसका कितना ज़्यादा प्रभाव था लोगों की थिंकिंग पे, तो हर बार एक नई कहानी हमारे सामने आती है आयुष, और हमें लगता है कि जो आज़ादी मिली हमारे भारत को वो कितनी आसान नहीं थी और कितने लोगों की कितनी उसमें संघर्ष था, कितनी मेहनत थी।
1: बिल्कुल, अब जैसे काजी नजरुल इस्लाम ने ही, इन्होंने लगभग 4000 से भी ज़्यादा गीत लिखे, और ये गीत आज को हम कलेक्टिवली नजरुल गीत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रेम, भक्ति, देशभक्ति, आध्यात्म और सामाजिक चेतना

0: इन सब का एक सुंदर संगम बना के प्रस्तुत किया अपनी रचनाओं में।
1: तो दोस्तों, काजी नजरुल इस्लाम जी हमें सिखाते हैं कि एक कलम जो है वो समाज में कितना बदलाव ला सकती है, यदि उसमें सच्चाई हो, साहस हो और इंसानियत हो।
0: आज़ादी के बाद जब बांग्लादेश देश बना, तब उसने इन्हें ही अपने राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया। और ये सम्मान उन्होंने सिर्फ एक कवि को ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र विचार, समानता और इंसानियत के मूल्यों को सर्वोपरि रखने वाले नागरिक को दिया।
1: तो आयुष, अब हमारे जो कार्यक्रम में हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं और कई जानकारियां भी देते हैं, लेकिन ये सब होगा लेकिन एक गीत के बाद।

0: साथियों, हम आपको अपने युवाड़ी प्रोग्राम में अक्सर आपके करियर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी भी देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कई सारे पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है और इसके आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 21 मई को शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून है। तो अगर आप इस परीक्षा को देने के इच्छुक हैं तो आप इसके आवेदन और पूरी जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है ssc.gov.in।
1: तो अब दोस्तों, हो चला है कि हम आज का प्रश्न भी आपसे कर लें। तो जो आज का प्रश्न है हमारा, वो ये है कि भारत में सब्सिडरी अलायंस किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए कि भारत में सब्सिडरी अलायंस किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। और आप अपना जो जवाब है वो दे सकते हैं या तो हमारी ईमेल आईडी जो कि है yuvvaniald@gmail.com पे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं अपने आंसर्स। हमारा नंबर है 8004926250। आई रिपीट द नंबर 8004926250 पर।
0: दोस्तों, ऐसे ही मैंने कल भी आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन सी ऐतिहासिक घटना है जिसे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तात्कालिक कारण माना जाता है। तो इसका सही जवाब है कि ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की 28 जून साल 1914 में साराजेवो, जो कि इस समय सर्बिया में है, वहाँ पर एक बोस्नियाई सर्ब विद्यार्थी ने हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध एकदम से शुरू हो गए।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आगे आप जो हमारा कार्यक्रम है वो एंड की तरफ आ रहा है, लेकिन चलते चलते एक गीत सुनवा देते हैं आपको।

0: दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव
1: और मुझे यानी आयुष
0: को दीदे इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड

0: साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। रात 9:30 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उर्दू के फरोग में नॉवल का योगदान विषय पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम में अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता होगी और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित एथलीट चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत होगी। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता महाभारत से शाश्वत प्रासंगिकता। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनिल कुमार के गाए गीत और भजन होंगे। 8 बजे सुनिएगा गंगा दशहरा पर विशेष रूपक जय गंगा मैया आलेख विवेक शर्मा का। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। रात 10 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उज्ज्वल दत्ता का ख्याल गायन होगा। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर गौरव पांडे से बातचीत सुनिएगा दुधारू पशुओं का टीकाकरण विषय पर। कल सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर RP शुक्ल की वार्ता होगी डायबिटिक एटिनोपैथी। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उज्ज्वल दत्ता का ख्याल गायन होगा। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, 9:00

का 30 मिनट पर उर्दू कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर कहकशा इरफान से मकाला दाग दहलवी के खुतून की तारीखी अहमियत और अतिया नूर से कलाम शायर। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में बनवारी लाल शर्मा की गई गजलें प्रसारित होंगी। 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का शीर्षक होगा स्क्रीन टाइम और तनाव। 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा NCERT। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उज्ज्वल दत्ता का ख्याल गायन आप सुनेंगे। 12:30 का समय होगा हेलो फरमाइश कार्यक्रम का। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में ममता मिश्रा की वार्ता होगी जेंडर इक्वेलिटी अधिकार भी जिम्मेदारी भी। और इसके अलावा मेरा हुनर मेरा व्यवसाय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगी बहने बेकरी और केक मेकिंग के बारे में। 2:30 पर सुनिएगा लोकगीत, कलाकार होंगे संतोष कुमार यादव सरोज सिंह और बबलू दीवाना और उनके साथी। युवाणी कार्यक्रम होगा 5:15। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम होगा। 7:31 पर बोलते नगमे कार्यक्रम में स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 6:20 होने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायाः अध्यक्षता कृता। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा स्वीकरणाय प्रतिबद्धता प्रकटिता। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रतिक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः राजस्थानस्य सांचो सीमा स्थाने गतवान। राज्यस्य सीमक्षेत्रेषु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू इत्यस्य आरंभम अकरोत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाः प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमंत्रिणां सभायाः अध्यक्षः अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमंत्री बेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायां भागं भजितवन्तः। सभायाः अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसंबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः क्वाड राष्ट्रेषु सहयोगं सुदृढीकरणाय परस्परं साहाय्यं कर्तुं च अवधानं प्रदत्तवान्। सः अवदत् यत् क्वाड देशाः मुक्त समाजाः सन्ति, ये समृद्धेः विकासस्य च अन्वेषणे नवान्वेषणे च सृजनात्मकतां पोषयन्ति।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकरः अवधानं प्रदत्तवान् यत् भारत प्रशांत प्रदेशः वैश्विक वृद्धेः स्थिरतायाः च चालकः भवेत्।

0: पुष्पपरम्परां च द्रष्टुं रिड्ज पार्क इत्यस्य आर्केडियम् अपि गमिष्यति। पश्चात् दिने सा नामग्याल इन्स्टिट्यूट् आफ् तिब्बतोलॉजी इत्यत्र गमिष्यति, यत् दुर्लभाः पाण्डुलिपीनां बौद्धसांस्कृतिककलाकृतीनां च संरक्षणाय प्रसिद्धः अस्ति। भारतं समेत्य समग्रविश्वात् कोटिशः जनाः अद्य सऊदी अरेबिया देशे हज यात्रां कुर्वन्तः सन्ति। ह्यः पञ्चदिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रायाः आरम्भः लक्षशः हज तीर्थयात्रिणः मीनानगरे रात्रिं व्यतीतवन्तः। अधुना ते अराफात क्षेत्रे मुख्य हज अनुष्ठानार्थं प्रार्थनार्थं च समागच्छन्ति। ते तत्र पूर्णदिनं यापयन्ति, प्रार्थयन्ति च। तीर्थयात्रिणः निमरा मस्जिद इत्यत्र खुत्बाय हज अर्थात हज प्रवचनं श्रुतवन्तः। ततः सायंकाले ते मुजदलीफा नगरं प्रति प्रस्थानात् प्राक् अपराह्ने सायंकाले च संयुक्तरूपेण प्रार्थनां कुर्वन्ति। भारत ऋतुविभागेन अद्य दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थितिः श्वः पर्यन्तं यथावदेव भविष्यति इत्यपेक्षते, यत्र अधिकतमं तापमानं चतुश्चत्वारिंशत्तः षट्चत्वारिंशत् डिग्री सेल्सियस् परिमितं यावत् भविष्यति। अद्य हरियाणायां चण्डीगढे, पूर्वी मध्यप्रदेशे, पंजाबे, उत्तरप्रदेशे, विदर्भे तथा पश्चिमराजस्थानराज्ये च तीव्र उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति भारत ऋतुविभागेन पूर्वानुमितम्। अत्रान्तरे अद्य श्वः दक्षिणपश्चिम प्रावृट्कालः केरलराज्यं प्राप्स्यति इत्यपेक्षते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में ग्रामीण वॉइस सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: क्यों? राम राम।
1: का बद्री भैया।
0: हाँ भैया,
1: एक पुरान काकूत आज हमरे मगरू काका सुनावत रहे ना,
0: का भैया
1: अच्छा लगा।
0: हाँ,
1: गर्मी का मौसम देखत हुए।
0: हाँ।
1: कहें सुमेर देखा फलाने।
0: हाँ।
1: भाई मौसम का अपन ताव तरक होते,
0: ओकरे
1: हिसाब से जो कार्य व्यवहार करे सावधानी बरते वह सुखी रहा था,
0: सही,
1: वह स्वस्थ रहा था।
0: एकदम एकदम।
1: तब कहे काका का कहें देखा भाई एक पुरान काकूत काकूत बाटे कि सबसे सुखी निरोगी काया, समझत है ना भैया,
0: बिल्कुल।
1: दूसरे पे माया, समझत है ना। तो अगर काया न दुरुस्त रहे, कागा न न निरोगी रहे, तो बहुत माया भी रहे ओकर उपभोग न कह पौबे। तो बात उनकर हमका बहुत अच्छी लगी। तो हम कहे काका काहे का चाहत हा? कहन बच्चा देखा था जात हा पंचायती में कितना तेज घाम बाटे, कपार उपार बढ़िया से बांधे रहा, अपन कपड़ा उपड़ा पहने रहा, और भाई ताजा खाना पीना खा, पानी उनी पियत रहा, सिखरन पियत रहा। तो कहे का मतलब ये बा भाई, जौन पुरान परिपाटी पुरान अनुभव बाटे वो आज भी हमरे तोहरे बीच में वैसे ही बाटे, ओकर बड़ा महात्म।

0: सही क्या भैया, और मंगरू भैया वह चाचा वह बताओ चाहत रहे कि देखें भैया स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन बा, ऐसी बड़ा न कोनो माया बा, न कोनो धन बा, न कोनो पूजा बा, न कोनो पद्धति बा, सबसे जरूरी बा आप स्वस्थ रहा। अगर आप स्वस्थ रहा तो जौन चाहबे आप जीवन में ओका भैया प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल एकदम सही बात कहा। हम तो कहा भाई पंचन से देखा पूजा पाठ का भी आपन मतलब बाटे, धर्म कर्म का भी आपन मतलब बाटे, लेकिन
0: हाँ
1: कुल मिला के केंद्र में खड़ा रहा भाई तब कही पौबे जब शरीर तुहार स्वस्थ रहे।
0: स्वस्थ रही
1: तीरथ व्रत भ्रमण तब कही पौबे जब शरीर चले फिरे का अनुमति दिए,
0: एकदम
1: समझत
0: सही
1: है
0: बात,
1: ना।
0: सही
1: अब
0: बात है।
1: देखा गंगा दशहरा बाटे
0: हाँ
1: भाई,
0: हाँ भैया,
1: बहुत मन करत है मन कि जाए गंगा जी नहाई,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: गंगा जी घाटे तक जाए के संगम घाटे तक जाए के बड़े
0: सही
1: तब
0: बात
1: पैदल
0: है,
1: ही चले पड़े ना
0: बिल्कुल
1: भाई।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो अगर शरीर में दम ना आई बाटे तो कैसे जाबा, माई गोदी में कैसे बैठबा, कैसे नहाबा, कैसे आचमन
0: सही
1: करबा।
0: बात है।
1: तो कहे का मतलब ये बाटे भाई, जीवन के हर ओर छोर के केंद्र में स्वास्थ्य खड़ा बाटे। और स्वास्थ्य भैया तबे बना रहे जब अच्छा खान पान हुए, संतुलित खान पान हुए, पानी का ध्यान रखबा, स्वच्छता का ध्यान रखबा, तब तई
0: सही
1: सबसे।
0: कहता है भैया कि एक एक चीज अगर देखें, जो हमारे लोग पुरनिया भैया नियम बनाए रहें कि भैया भोजन करे पहले आपका स्नान करे चाहिए, हाथ पांव धुल के नहीं जाता है, और जहाँ बैठता है भोजन करे बरे हुआ देखा बढ़िया लीपत पोतता है, वैसे चूल्हा चौका लीपत पोतता
1: हाँ
0: है,
1: भाई
0: बर्तन
1: साफ
0: धोए,
1: सफाई रहे ताकि
0: हाँ
1: कीटाणु न लगे।
0: कीटाणु न
1: देखा
0: लगे,
1: कितना बड़ा वैज्ञानिक का भाई, वो व्यवहार से जोड़ दे रहे हैं, संस्कृत से
0: हाँ
1: जोड़ दे रहे हैं, लेकिन कुल केंद्र में विज्ञान ही रहा है। और एक बात ये रहा ना भैया कि ताज़ा भोजन पे जोर रहा, आज जोर बाटे
0: सही बात है।
1: ताज़ा कम तला भुना तेल मसाला का भोजन करें पंचरे, ये सबसे बढ़िया बाटे। और साथ ही साथ जो कहा था ना कि यहाँ समय तो देखा अमृत बाटे भाई, खरबूजा तरबूजा ककड़ी खीरा
0: सही है
1: आम का पना बाटे, गन्ना का रस बाटे, ये सब तो बहुत बढ़िया चीज़ बाटे।
0: भाई, तो मौसम है भैया, यह सब खाए पिए के मतलब जो उन कहा थे कि अगर जीभू को स्वाद ले कहा है आपका कि आनंद ले कहा है कि भैया कौन कौन रस आए, तो मौसम ही वाला केवल रस ले वाला भैया यार।
1: बस तो हम कहते भाई शरीर से देखा रस निकल था पसीना निकल था, तो ओकर
0: हाँ
1: भरपाई पानी हो या तरीके से जो उन तरल पदार्थ है इसे पूरा की जायज करें। तो पंचशील अरदास है भाई एक अनुपालन करें और स्वस्थ रहें। दूसरी बात यह है भाई कि देखा कोनो भी फसल हुई तो एक तो ये होता कि भाई मौसम साथ दे, समझता है ना।
0: हाँ
1: दूसरी बात ये रहा कि भाई आसपास का जो वातावरण पर्यावरण बाटे उस साथ दे, तो कभी कभी कीड़ा मकोड़ा या तरीके से भाई उमा कीट लग जाते हैं जो उनकी फसल का नुकसान करते हैं। अब यहाँ समय देखा भिंडी की फसल खड़ी बा खेते
0: हाँ
1: में,
0: हाँ हाँ
1: तो बड़ी शिकायत रहा कि भाई यहाँ कीड़ा लगाता है तो काट के गिरा देता है, फूले गिरा देता है तो फली गिरा देता है। साथ ही साथ हम समझी था और जो भी फसल यहाँ है
0: भैया,
1: सब्जियाँ
0: चाहे
1: देख।
0: नेनुआ है समय बढ़िया एकदम तैयार भा है,
1: हाँ
0: अब नेनुआ में ही समस्या, और करेला में, जबकि करेला में कहाँ कि पहले कोनो बीमारी नहीं लागत
1: और
0: रही,
1: कीड़ा ना लगा था
0: अब
1: मुझे लगा
0: देखा
1: था है।
0: अब करेला में एकदम मतलब सड़न आई जाती है, इतना से भैया कीड़ा आ जाता है, और कीट पतंग का भैया इतना है कि ओकरे बड़े मनई का करें, बहुत करें तो लइयान रसायन बनाएन घोल और रसायन छिड़क दहन।
1: नहीं तो भाई हम तो देखा पंचन से बार बार अरदास करी था कि रसायन देखा खेतों के नुकसान करता, फलत का नुकसान करता, जहरीला होता और साथ ही साथ माटी का नुकसान करता, पर्यावरण का नुकसान करता। तो करे बड़े भाई जो पुरान परिपाटी रही बाटे कि नीम का पाती नीम का खली बाटे एका भिगो के उबाल के ठंडा कर ओकर छिड़काव करें,
0: सही
1: साथ ही
0: बात
1: साथ
0: है,
1: गौमूत्र का भी छिड़काव करें तो बहुत मुफीद रहता है। ऐसे फसल अच्छी हो तो गुणवत्ता बनी रहा तो माटी का नुकसान ना होता और लागत भी भाई बचत है।
0: सही कहन भैया। और एक भैया ये कीट पतंगा रोके करे, एक ठू जो नाम दर यहाँ दसपर्णी ब्रह्मास्त्र जी का बोले थीन
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: वहाँ भैया नीम हो गया, धतूरा हो गया, अब मदार हो गया, करण जो बेल, ये सब का पौधन के जितनी पत्ती रहा भैया एका इकट्ठा करके गौमूत्र और गोबर के साथ एक सड़ाए दे थीन, और
1: हाँ
0: जौन ऐसी भैया अर्क बना था वो कहात ने इतना कारगर रहा है, आप एक तरफ रसायन छिड़कत रहा होकर प्रभाव न हो, लेकिन जहाँ एक छिड़काव को देव्या एकदम जान लग कौनों कीट पतंगा होना
1: अरे
0: लगी
1: भैया
0: है,
1: रसायन वाले में हो तो कहा कि छिड़के हाँ 15 दिन के बाद फिर छिड़का,
0: फिर छिड़के
1: नहीं
0: उस
1: तो
0: पर,
1: कभी कभी हो तो कहा कि वापस हो जाते हैं।
0: सही
1: मूल
0: बात है
1: एका एकदम छिड़क दिया तो ओकरे बाद कोनो कीट पतंगा पात ना पटकी है
0: एकदम
1: पूरे।
0: सही बात भैया। और रसायन तो एक बार सीधे जब आहार नली में हमारे शामिल हो जाए भैया, तो कुल मिलाए कि हमारा स्वास्थ्य खराब करी जेकर वहीं पहले बात होत रही, अ कम से कम आप ये नीम वगैरह का चीज इस्तेमाल करता था तो एकर स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहा एक तरह से, और इलाज के लिए आपका अस्पताल न गया, भागे पड़ी भैया रसायन खा ले आए और स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो चला जाता है।
1: कहा मतलब ये बात भाई कि सबसे सुखी निरोगी काया, तेरे बड़े जोन भी भाई जैविक तरीके से प्राकृतिक तरीके से उपचार हो सका था, सावधानी हो सका था, वो का जीवन

0: मैं अपना वही कहा है, स्वस्थ रहा कहा है सबको भाई। और एक बात और हम कहा, देखा भाई आज रामायण पाठ का दिन बाटे,
1: अच्छा भैया
0: तो पंचहरे रामायण सुनी है मुलोकरे, पहले हम कहा देखा संगीता मिश्रा का गावा झूमर बाटे पंचहरे, सुन ले फिर बात कही हो।
1: ठीक भैया।

0: हाँ भैया,
1: देखा
0: हाँ
1: भाई गर्मी में शिमला घूमे के मकर
0: आ
1: तबाके।
0: सही बात भैया, ऐसा लाग कि जी देशों में एकदम सही सही करत यहाँ तो शिमला लाई के जाए चाहिए वैसे भौजाई को भैया।
1: और साथे साथ एक बात यो रहा कि भाई पहले नीम के
0: हाँ
1: पेड़ लगावा जाता है, तो नीम के जब हवा चले तो नीम के जो डार रही जब चल भाई डोले ने मुर मुर,
0: हाँ
1: तो इतना शीतल हवा मंद हवा मतलब नीम के पेड़ दुआरे कम दिखाई पड़ता है। तो यह कुल बात पंचन का गौर विचार करे का है। हम कहा देखा भाई रामायण पाठ के दिन बाटे तो भैया श्यामाचरण पांडे जी पंचन से रामायण पाठ का महिमा बताओ तो है सुने हो गुने भाई।
0: बिल्कुल भैया सुनो।
2: यह रामायण पाठ लघु कथा बालकांड से है, नाम श्यामाचरण पांडे।

को अक्षरों अनेक अर्थों रसों छंदों और मंगलों के करने वाले श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ।

सकुची मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई ना।

भोजन और विश्राम करके बैठते हैं। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी अभिलाषा होती है कि मैं जनकपुर देख आएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर और मुनि विश्वामित्र जी का संकोच से प्रकट नहीं कर रहे हैं। श्री राम जी मन की बात जान लिए, हे नाथ लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखा करके शीघ्र लौट आऊं। गुरु जी कहते हैं, महात्मन विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो। दोनों भाई जाकर के प्रसन्न चित्त से जनक जी के नगर को देख आओ।

सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं मुनि के चरणों की वंदना करके लोगों के नेत्रों के सुख देने वाले पीतांबर पहने हुए कमर में तरकस कसे हुए हाथों में बाण शोभा दे रहे हैं। सांवले और गौर वर्ण की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान ऊंचे कंधों विशाल भुजाएं छाती पर सुंदर गजमुक्ता की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। काले काले घुंघराले बाल सिर पर सुंदर टोपियां हैं। देखन नागा

काम। गोस्वामी जी कहते हैं, महात्मन विश्वामित्री जी कह रहे हैं कि जब पूर्वासियों ने यह समाचार पाया, दो राजकुमार नगर देखने आए हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, स्त्रियां झरोखों से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं और कह रही हैं कि करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहे हैं। किशोर अवस्था श्याम और गौरवर्ण के सुंदर राजकुमार हैं, ऐसी सुंदरता तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा। कह

राम लघु भ्राताय सुनु सखितासु सुमित्रा माताय विप्रकाज करी वन

नारी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, सखियां कहती हैं, ऐसा कौन देहधारी है जो ऐसे रूप का दर्शन करके मोहित न हो जाए। हे चतुर सखी, मैंने जो सुना है सुनो, ये दोनों महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। इन्होंने महात्मन विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और रण में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर सुंदर कमल के

वर्तमान नेत्र हैं, ये कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम श्री राम है। और जो गौरव अर्ण के हैं, जो कि श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। देखी

0: श्री राम जी के छवि को देख करके एक सखी कहती है कि जानकी जी के योग्य तो यही वर हैं, यदि राजा जनक जी देख लें तो अपना प्राण त्याग करके जानकी जी के साथ विवाह अवश्य कर देंगे। कोई सखी कहती हैं कि राजन ने, जनक जी ने इन्हें पहचान लिए हैं और मुनि समेत, विश्वामित्र जी के समेत, 88,000 ऋषियों के समेत सादर सम्मान किए हैं।
1: हाँ भैया,
2: हाँ भाई,
1: देखा बहुत बढ़िया। यहाँ पे श्यामाचरण पांडे भैया आज के बाल कांड का भैया इतना मार्मिक वर्णन करें कि ऐसा लगा कि सजीव हुए उठा है त्रेतायु।
2: ये भैया देखा, रामचरित मानस का जीवन कहा जाए तो जीवन का हर पहलू, हर चरण, हर संबंध, देश समाज से कहा चाहे, परिवार से कहा चाहे, प्रजा रियाया से कहा हो चाहे, और पूरे विश्व के साथ में, मानवता के साथ में कहा हो चाहे, पेड़ पालो पक्षी पशु के साथ में कार्य व्यवहार कैसे हो चाहिए, सबका भैया वर्णन बटे। तो हम कहते बात यह है कि का सुने भी जीवन में अगर आत्मसात कर लें पंचरे तो जीवन का बड़ा खुशहाल हो जाए भैया, परिवार खुशहाल हो जाए, देश समाज खुशहाल हो जाए।
1: तो हम
2: कहा भाई देखा एक पहले कुछ और बात कही हो, बाबूलाल दिवाकर का एक विकास की दवा हो जाए फिर बात कही हो।
1: हाँ भैया,

0: हाँ
1: भैया
0: भैया।
1: दिखा, अभी तक गाँव नहीं रही है। अब एक बार पंचायत सी कहा कहा कि भाई दिखा खरीफ का समय आवत बाटे,
0: हाँ भैया।
1: तो ओकर बेहन ओहन का तैयारी, खेत का तैयारी, बिया बिसार का तैयारी, का कुछ कार्यविधि रखे के बाटे, कौने प्रजाति का चयन करे के है, तो अब वहीं से सब पंचन का चिंतन करे के पड़े ओकरे
0: बिल्कुल
1: बारे
0: भैया
1: में।
0: बिल्कुल।
1: और खास तौर पर वहाँ का माटी देखत भय, पर्यावरण वातावरण देखत भय कि पानी का उपलब्धता बाटे, सुनता पानी रुका था खलार बाटे कि पानी बह के निकल जात है, तो ऐसा दशा दिशा में प्रजाति का चयन करें, समझता ना। और समय से अगर रोपनी कर ले गए भाई धाने का, तो इसमें दुराना है कि उत्पादन भी अच्छा होता, तो फसल रोग ब्याज से बचा रहता।
0: बिल्कुल। अब भैया हम कहा अगर कुछ न समझ में आवे कि काहे के चयन करे, काहे कैसे खेती करे, काहे अपने कृषि रक्षा इकाई चला जाए या ब्लॉक चला जाए, कृषि संसाधन केंद्र चला जाए, और सारी जानकारी हुआ कृषि वैज्ञानिक भैया रे निःशुल्क भैया आपका उपलब्ध करा
1: बताओ एक
0: देंगे
1: बार, हम कहते अब तो मोबाइल उस भाई
0: मोबाइल
1: सुविधा
0: से बात।
1: बाटे, पूछ सकत है जा सकत है। मुलोकरे पहले जो उनके है ना कि चला जाए भाई माटी ले जाए नमूना,
0: हाँ सही
1: माटी
0: बात
1: का
0: है,
1: जांच करा ले,
0: बिल्कुल
1: समझता
0: बिल्कुल।
1: सेते में होता है, तो
0: हाँ
1: ऐसे बहुत कुछ पता चल जाए। फिर उनका एक विस्तार से पूरा वैज्ञानिक भैया अरे बता दिए इतना खाद के जो

0: अंग्रेजी खाद कितना, गोबर कितना, कंपोस्ट का खाद बाटे, कोने कोने समय पर का कुछ कृषि कर्म करे की जरूरत बाटे,
1: हाँ
0: तो वह तरीके से अगर पंच भैया हरे अपने खरीफ का तैयारी करिए ना, तो एम दू राय ना बा फसल उनका अच्छा रहे। और एक बात और यह कहा है
1: हाँ भैया
0: कि पंच भैया हरे कार्यक्रम के बारे में का कुछ सोचत बिचारा थे, का कुछ उनका जरूरत बाटे,
1: हाँ
0: कैसे वो बताओ अपन जरूरत, ताकि उनका कार्यक्रम में शामिल की जा सके और ज्यादा अच्छे तरीके से उनका जरूरत पूरी उसके कार्यक्रम के माध्यम से। तो देखा आकाशवाणी प्रयागराज की तरफ से एक भैया नंबर दिन का बाटे,
1: हाँ भैया
0: क्या बताए देते भैया।
1: हाँ भैया नंबर नोट कर ले किसान भाई, 800-4926-2500 नंबर एक बार और नोट कर ले भैया, 800-4926-2500। एकरे अलावा भैया आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से अपन फेसबुक पेज बा, हुआ जाए के कमेंट आप कह सकते थे।
0: हाँ तो कमेंट हुआ कह सकते थे ना, और यहाँ पर प्रतिक्रिया हुआ दें, और यहाँ पर भाई आपका सुझाव लिख के भेज सकते व्हाट्सएप से, तो उनका सुझाव को शामिल की जाए और कार्यक्रम का उनके अनुसार बनावे कोशिश की जाए भैया। तो हम कहा ये बात रही है, हम कहा भाई देखा आज गंगा दशहरा का दिन बैठे,
1: हाँ हाँ भैया,
0: तो माई का बखान करे के बाद देखा रेणुराज सिंह बहनी के गाई गावा गंगा गीता है पंचे सुने।
1: बिल्कुल भैया सुनो।

0: हाँ भैया,
1: हाँ भैया देखा, आज तो गवने ही रहा गंगा जी माई का सुनन।
0: हाँ
1: पंचहरे अब एक बात ही कहा गया है कि भाई अपन अपन ख्याल रखें, पशु प्राणी ख्याल रखें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ख्याल रखें।
0: हाँ,
1: चले के बेला हो तो पंचायत जाए, अच्छा पंचो
0: राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायत

0: पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
2: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
4: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरोध विद्युत की सप्लाई हो। और
1: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और

0: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता महाभारतस्य शाश्वती प्रासंगिकता।
2: नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम्, नास्ति त्याग समम तपः। समग्रस्यापि संस्कृत वाङ्मयस्य सारभूतस्य महाभारतस्य उक्तिरियं तस्य शांति पर्वणि उल्लिखिता अस्ति। सनातन वाङ्मये महाभारतम् एको महासागरः। अष्टादश पर्वसु विभक्तं महाभारतं न केवलं आख्यानं, न केवलं युद्धस्य विवरणं, अपितु मानव सभ्यताया व्यवहारिकः ज्ञानकोशोऽपि वर्तते। लक्ष्यपरिमितश्लोकैः समन्वितमिदं पूर्वं शतसाहस्री संहिता इत्यनया संज्ञया विभूषितं। वस्तुतः महाभारतस्य प्रगतेः चरणत्रयं वर्तते। प्रथमे चरणे जयनामकं काव्यमेतद् अष्टशताधिकाष्टसहस्र श्लोकपरिमितं व्यासकृतं धर्मचर्चाम् आश्रित्य वैशंपायनाय श्रावितम् अभूत्। द्वितीयचरणे भारत इति नाम्ना प्रथितं काव्यमेतद् वैशंपायनकृतं चतुर्विंशतिसहस्र श्लोकपरिमितं जनमेजयस्य नागयज्ञे जनमेजयाय श्रावितम् अभूत्। तृतीय चरणे महाभारत नामकं काव्यमेतत् सौतिकृतं एकलक्ष श्लोकैः समन्वितं नैमिषारण्ये यज्ञकाले शौनकादिभ्यः ऋषिभ्यः श्रावितम् अभवत्। महत्वाद् भारवत्वाद् चेदं महाभारतम् उच्यते। पंचम वेद रूपेणापि अस्य ख्यातिरस्ति। वेदेषु उपनिबद्धानि दार्शनिक तत्त्वानि अस्मिन् महाभारते आख्यानोपाख्यानादिभिः सरलरीत्या प्रतिपादितानि। वेदानां यज्ञादि कर्मकाण्डसमन्वितत्वाद् अध्यात्मप्रवणत्वाच्च न सर्वग्राह्यत्वं विद्यते। अतैव लोकाख्यानसमन्वितं नीतिदीक्षाविशिष्टं राजनीतिशिक्षासंवलितं आचारोपदेशसंपुष्टं च कान्तावचो मधुरं काव्यमिदं व्यासेनोपदिष्टम्। अस्य पावनत्वम् उत्कृष्टत्वम् सर्वार्थसाधकत्वम् च प्रेक्ष्य पञ्चमोऽयम् वेदः इति विद्वद्भिः साहलादम् उद्घोष्यते। महाभारतस्य महत्त्वम् व्यापकत्वम् तस्य शाश्वतीम् प्रासंगिकताम् च

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए, आप प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें आप सुनेंगे अनिल कुमार के स्वर में गीत। तो लीजिए, इनके स्वर में सुनिए रूप कुमार रूप का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अनिल कुमार के स्वर में गीत। लीजिए अब इन्हीं के स्वर में सुनिए जयशंकर प्रसाद की रचना।

0: Akashvani at 90.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गंगा दशहरा पर विशेष रूपक जय गंगा मैया। आलेख है विवेक शर्मा का।

0: तुलसीदास नहीं क्यों, कालिदास, भवभूति, भारवी, वाल्मीकि आदि ने भी इसकी स्तुति से अपनी लेखनी को धन्य किया है।
1: वेदों में इसे देवों की नदी कहा गया है। पहले गंगा स्वर्ग में बहती थी और इसके जल को अमृत जल कहा जाता था, लेकिन राजा सगर के वंशजों ने अपनी तप परंपरा से इसे धर

0: कहते हैं कपिल ऋषि के शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। उनके मोक्ष के लिए पहले अंशुमान ने और फिर दिलीप ने घोर तपस्या की और प्राण त्यागे। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप करके पहले ब्रह्मा को फिर शिव को प्रसन्न किया।
1: ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर जाने की अनुमति दे दी और शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में उलझाकर उनके तीव्र प्रवाह को रोका ताकि वो अपने भयंकर वेग और प्रचंड नाद से धरती के संतुलन को बिगाड़ न दें।

0: शांत गंगा शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर आई तो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। जहां जहां रथ गया वहां वहां गंगा गई और अपने अमृत जल से धरती की प्यास बुझाती गई।
1: इसके कारण धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई और देखते देखते पूरी धरती पर हरियाली छा गई।

0: कल कल करती गंगा ऋषिकेश हरिद्वार गढ़मुक्तेश्वर सोहरो इलाहाबाद बनारस और पटना होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। गंगा के चरण स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। वहां से चलकर गंगा समुद्र में समा गई। गंगा एक नदी ही नहीं भारतीय जन आस्था का प्रतीक भी है।
1: गंगा भारतीय संस्कृति का इतिहास है।
0: गंगा भारतीय सभ्यता के विकास की कहानी है।
1: गंगा भारतीय जीवन शैली का आधार है।
0: गंगा धार्मिक भावनाओं का रेखा चित्र है।

0: गंगा मानव के पुरुषार्थ का उद्धरण है, इसलिए मनुष्य गंगा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता।
1: सुख दुख, तीज त्योहार, जन्म मरण में गंगा का अपना महत्व है।
0: धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल के बिना कार्य सिद्धि की बात भी कल्पना से परे है।
1: मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालकर पापों का नाश तथा स्वर्ग प्राप्ति की

0: किनारे बसे तीर्थों की पावन परंपरा मनुष्य जाति को अपने उच्चादर्शों के लिए सदैव अनुप्राणित करती रहेगी।
1: हिमालय के भृगुपंत, मेरु पर्वत तथा शिवलिंग आदि पर्वत शिखर हैं। यहीं पर एक स्थल है गोमुख। यूं तो गोमुख से ही गंगा का उद्भव माना जाता है, किंतु वास्तव में गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद के अंदर है।

और ये हिमनद भी रुद्र, केदार, मंदा, भृगु, कीर्ति, गहन, मंथनी, रक्तवर्णी, चतुरंगी, बाजुकी, सुरालय, सीता, कालिंदी नाम के अनेक छोटे बड़े हिमनदों से संपोषित है।

0: उछलती कूदती गंगा की इस जलधारा को आगे चलकर जाह्नवी अपने बाहुपाश में भर लेती है।
1: इसके आगे पंच

शिवप्रयाग हैं, विष्णुप्रयाग जहां धौली गंगा का अलकनंदा से, नंदप्रयाग जहां अलकनंदा का नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग जहां अलकनंदा का कर्णगंगा या पिंडर नदी से, रुद्रप्रयाग जहां अलकनंदा का मंदाकिनी से, और देवप्रयाग जहां भागीरथी से अलकनंदा का संगम।

0: विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम होता है।
1: शैलपुत्री गंगा अपने पिता हिमराज की गोद से सबसे पहले हरिद्वार में ही उतरी।
0: यही हरिद्वार पूर्ण तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है।
1: गंगा की इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत

जहां ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार

0: पाषाण या प्रस्तर युग का जन्म और विकास यहाँ होने के अनेक साक्ष्य मिलते हैं।
1: इसी घाटी में रामायण और महाभारत कालीन युग का उद्भव और विलय हुआ।
0: यही भारत का वो स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने यहाँ शासन किया।

0: गंगा के जल प्रवाह ने भारत के सुख दुख में समान रूप से हिस्सेदारी की है।
1: इसने राजनैतिक उत्थान पतन भी देखे तो सांस्कृतिक उन्नति और अवनति भी।
0: सामाजिक उत्कर्ष और अपकर्ष में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया
1: तो साहित्यिक स्पंदनों का चक्षुदर्शी साक्षी भी बना।
0: गंगा तट पर बसा हस्तिनापुर, कृष्ण, दुर्योधन और चंद्रवंशी भरत कुल की राजधानी के कारण अमर हुआ।
1: भवभूति और राजशेखर ने इसी के तट पर अमर साहित्य की रचना की।
0: पांचालों की राजधानी कांपिल्ले ने और उसके आगे कन्नौज ने गंगा का प्रसाद पाकर अपने को धन्य कर लिया।
1: गंगा, यमुना और लुप्त नदी सरस्वती के पावन सम्मिलन ने प्रयाग को महातीर्थ

0: संबोधन मिला।
1: विश्वनाथ महादेव ने अपना निवास जिस तट को बनाया उसी तट पर काशी नगरी का निर्माण हुआ।
0: अर्धचंद्राकार बहती गंगा के असी घाट पर बैठकर ही तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की।
1: सोन नदी और गंगा के संगम तट पर बसा नगर ही पाटलिपुत्र कहलाया। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जानते हैं।
0: पाटलिपुत्र में पाणिनी ने व्याकरण लिखा और कात्यायन ने उस व्याकरण में यही सुधार किया था।

0: योग सूत्र भी तो यही लिखे थे। गंगा के तट पर बने तीर्थों की अपनी प्रेरणादायिनी कथाएं हैं।
1: इन कथाओं में राजनैतिक उच्चादर्शों की स्थापना की मंद पदचाप सुनाई देती है।
0: इसमें भारतीय संस्कृति की नैसर्गिक थिरकन ही दिखाई नहीं देती, बल्कि साहित्यिक भंगिमाओं का पवित्र स्पंदन भी सुनाई देता है।

0: वो चाहे हरिद्वार, प्रयाग या काशी से ही क्यों न जुड़ी हो, तीर्थों की कोटी तक पहुंचने के लिए इन पुण्य स्थलों ने न जाने कितने संघर्षों का सामना किया।
1: कहते हैं देवताओं और राक्षसों के सम्मिलित प्रयास से समुद्र मंथन करके अमृत कलश निकला था। इसी कलश से अमृत की बूंदें छलक कर जहाँ जहाँ गिरी वहीं पुण्य तीर्थ हुए और इसीलिए उन स्थानों पर

0: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 वर्ष के पश्चात कुंभ मेला लगता है।
1: इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु अप्रत्यक्ष आमंत्रण के कारण गंगा स्नान हेतु स्वयं पहुंचते हैं।
0: बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की यज्ञ स्थली के रूप में प्रयाग का उल्लेख धर्म ग्रंथों में आता है।

0: भरद्वाज मुनि के आश्रम में श्री राम ने विश्राम किया था, जो कि प्रयाग में ही स्थित है।
1: गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का संगम स्थल प्रयाग ही है। काशी ही क्यों, प्रयाग और हरिद्वार ने भी तो हर दशा में अपने गौरव की रक्षा की है, और जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज भी वो मानव कल्याण के लिए प्रस्तुत है।
0: इसका मुख्य आधार है गंगा, जिसने मानव के आस्था के बांध को टूटने नहीं दिया।
1: इसीलिए तो मानव जाति के मन में गंगा के प्रति आस्था और विश्वास का समुद्र आज भी लहराता है।
0: मकर संक्रांति का पर्व हो या कोई अन्य पर्व, देश के कोने कोने से लोग गंगा मैया की जय बोलते हुए गंगा तट पर स्नान हेतु पहुंचते हैं।
1: किसी ने सच ही तो कहा है, गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे गंगा दशहरा के अवसर पर विशेष रूपक जय गंगा मैया, आलेख था विवेक शर्मा का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं कविता पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचना।

इसी खुबाली के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए।

0: और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
4: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर।
5: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
4: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित

0: खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4,000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख

0: झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
5: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निज़ाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी।

0: परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नज़दीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरतहाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक, आज़ादी, सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडोरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पा जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरखास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी ज़रई कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुकाम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जख़ीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिलशुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का अहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम हो।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।
1: प्रस्तुत है उर्दू के फरोग में नावेल का योगदान विषय पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। शनिवार 9 मई 2026 को सुप्रसिद्ध साहित्यकार अहमद हसनैन के नावेल आ अब लौट चले का रस्म इजरा करेली स्थित एक कॉलेज में हुआ। इस अवसर पर उर्दू के जाने माने कलमकार मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत अतिथियों के माल्यार्पण और शॉल देकर की गई। डॉक्टर कमर आब्दी ने काजिम आब्दी द्वारा लिखित सम्मान पत्र पढ़कर सुनाया।
2: मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब अहमद हसनैन से उनके इस नावेल पे। बतकरीब जश्न एजाज और रस्म इजरा आ अब लौट चले अदीब असर मौलिम व मुहिब बतारीख 9 मई 2026 जाद शरफकुम सलामी सामी इलाहाबाद मरकज़ इल्म व अदब अपनी तहजीब मुनफरिद सहाफत तमद्दुन और दरख्शां तारीख के सबब चार दांगे आलम में बुलंद रुतबा है। इस जमीन से जो अरबाब दानिश मरसे शहूद पर रौनक फरोज हुए उन्होंने शोहरत आम और बकायद आम हासिल करके वादिये गंगो जमन की जीनत में चार चांद लगाए। क्योंकि रूहानियत यहाँ की फिजा में खुशबू बिखेर रही है तो गराने इल्म इन्हीं फख्र रोजगार हस्तियों में एक जनाब अहमद हसनैन साहब की ज़ात वाला सिफात भी है। क़त्ते अवध इनका वतन है जिनकी तहजीब बायस शरफ है। इस अजीम इंसान में जुमला महासिन यज्ञा हैं। इन्होंने शहर के मुअक्कर मिल्ली इदारे यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज में बहैसियत उस्ताद और मदरिस आला खिदमात सरंजाम दी और इस तालीमी इदारे के मेयार को बदरजे आला सरबुलंदी अता की। मुआशियात इनका मजमून है लेकिन मैदान अदब में कदम रखकर अदबियात में ग्रां कद्र इजाफा किया। इनकी 9 अदद तसानीफ जेवर तबा से आरास्ता होकर अहले इल्म को जिला बख्श रही हैं। मोहतरम ग्रामी उस्तर आला तालीम नज्म ज़ब्त और रवायती तहजीब का मुरक्का अहमद हसनैन साहब के पैकर में नज़र आता है। एक शफीक मुअल्लिम कामयाब मुदर्रिस आला और कलम के खिदमत गुजार के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। शोहरत और कुदरमई से मुस्तस्ना अहमद हसनैन साहब हनूज परवरिश लोहो कलम में मसरूफ हैं। ये उनका मबहिल इम्तियाज है। हमें कलबी मसरत है कि उनकी हालिया तसनीफ आ आप लौट चले का इजरा बज़्म यारा के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। हम उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए सिपासगुजारी के फरीजा अदा कर रहे हैं। इस ज़र्रे मौके पर मौसूफ की खिदमत में हदिये तबरीक पेश करते हुए बारगाह इलाही में 10 बदुआ हैं कि उनकी तौफीकात में दो चंद इजाफा हो। इसमें जो शेर अर्ज किया है लिखा काजिम आब्दी साहब ने वो मिर्ज़ा ताक़त दहलवी का है। पत उनका बहुत खूब इबारत बहुत अच्छी अल्लाह करे उसने रकम और ज्यादा मिन जानिब काजिम आब्दी सदर बज़्मे यारा इलाहाबाद। शुक्रिया।
1: मशहूर साहित्यकार डॉक्टर सैयद अली हैदर ने नॉवेल पर विशेष चर्चा करते हुए कहा,
3: हाँ अब लौट चलें के इजरा के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से अहमद हसैन साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ। इस दौर में वो लगातार किताबें तहरीर कर रहे हैं जब लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है और सब कुछ यूजुअल हो गया है। मगर मेरे अजीजो मोहम्मद सरो लगा कि कुछ हो जाए, किताबें अपनी जगह पर अहमियत की मालिक रही हैं और रहेंगी। बकौल अफलातून अगर कोई चीज़ जिंदा रहेगी तो वो सिर्फ तहरीरें ही जिंदा रहें। तो इस तहरीर के लिए मैं अहमद हसनैन साहब को मुकर्रर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सामीन गरामी आप लौट चलें 224 सफ़ात को मुहित असरी आलमी और मुल्की वहशतनाक मंजरनामे या वहशी जंगल राज पर एक गयूर और संजीदा तहरीर है। अहमद हसनैन का ये ताज़ा तरीन नावल बहुत ही दीदा जेब और हसीन सरे वरक के साथ लिखी छापी और बनाई गई किताब है जो नावल निगार के जमाल

जवाब दिया कि नहीं, अभी मैं उन जल तरंग के इंतजार में हूँ जिसका दीदार अभी नहीं हुआ। उनमें से एक ने कहा चलो साथियों, तो दूसरे ने जवाब दिया क्या अब लौट चलें? फिर सबों ने बरजस्ता फैज अहमद फैज का एक मिसरा दोहराया, न जाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अहमद हसनैन मुआसिर उर्दू फिक्शन के उन अदीबों में शामिल हैं जिन्होंने जिंदगी को महज जाहिरी सतह पर नहीं देखा बल्कि उसके दाखली और तहजीबी पहलुओं को भी समझने की कोशिश की है। इनका ताज़ा नावेल आप लौट चलें मुआसिर उर्दू फिक्शन में एक अहम और काबिल तवज्जो तख्लीक के तौर पर मंजर आम पर आया। ये नावेल महज एक बयानिया नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात, समाजी इंतशार, तहजीबी जवाल और शनाख्त के बहरान का गहरा मुशाहिदा है। मारूफ नाक़िद गोपी चन्नारंग का यह ख्याल कि जदीद नावल निगार अपने अहद के तहजीबी शिकस्त व रेख को सिर्फ बयान नहीं करता बल्कि उसके बातिन में उतर कर इंसानी वजूद के बहरान को दरियाफ्त करता है। गोपी चन्नारंग का यह कौल अहमद हसनैन की नावल निगारी पर पूरी तरह सादिक आता है क्योंकि इनके किरदार अपनी जात, समाज और जमाने के दरमियान मुसलसल कश्मकश में मुब्तला दिखाई देते हैं। अहमद हसनैन के नावल का सबसे अहम मौजू जदीद तहजीब का बहरान है। इनके नज़दीक तरक्की याफ्ता माशरा बज़ाहिर रोशन जरूर है मगर रूहानी तौर पर खोखला हो चुका है। नावल का इक्तबास देखें। शेखर जी ने अपने बेटे को फोन करके बताया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो देखने न आया। जब उसे मरने की इत्तला मिली तो अमरीका से आया, दूसरे दिन क्रियाक्रम में शरीक हुआ और अपने बाप से मिलकर अफसोस करता रहा कि काम की मसरूफियत की वजह से वो जल्दी ना आ सका। नतीजा ये कि माँ की जिंदगी में उन्हें आखिरी नजर न देख सका। दिलेर सिंह ने वीरांगना को दुखी देखकर कहा तुम काहे इतनी परेशान हो। शेखर जी का बेटा रोहित तो दूसरे दिन ही अमरीका लौट गया, तेरही तक भी नहीं रुका, ईश्वर जाने शायद छुट्टी न मिली हो। वीरांगना ने कहा माई से बढ़कर नौकरी, दिलेर सिंह से बोले बगैर न रहा गया। इतनी जल्दी बेटे के चले जाने पर शेखर सेठ के दिल को एक दूसरी चोट लगी थी। हमको ये ख्याल रहे कि अदब की रिवायत में वो तख्लीकात ज्यादा देर पर साबित होती हैं जो अपने अहद के दाखिली और खारजी मसाइल को न सिर्फ बयान करें बल्कि उसके पस मंजर में इंसानी रूह के इस्तराब को भी आश्कार करें। आप लौट चलें इसी नौयत का नाविल है जो कारी को एक फिक्री और जज्बाती सफर पर ले जाता है। अहमद हसनैन ने इस नाविल में माजी की बाजगश्त, हाल की उलझन और मुस्तकबिल की बेयकीनी को नहायत खूबसूरती से इकजा किया है। नाविल का मरकजी ख्याल वापसी के तस्वुर के गर्द घूमता है। ये वापसी महज जुग्राफियाई नहीं बल्कि रूहानी, तहजीबी और नफ्सियाती भी है जो उसकी तन्हाई में बदल जाती है। डॉक्टर वजीर आगा के मुताबिक जदीद इंसान का सबसे बड़ा अलमिया उसकी रूहानी तन्हाई है। अहमद हसनैन का फिक्शन इसी रूहानी तन्हाई की दास्तान मालूम होती है क्योंकि इनके किरदार शदीद दाखिली इज़्तिराब का शिकार होते हैं। यहाँ तक कि नावल के किरदार एक ऐसे सफर पर गामजन नजर आते हैं जहाँ वो अपने खोए हुए वजूद, रिश्तों और इकरार की तलाश में सरगर्दा हैं। अहमद हसनैन ने समाजी इस्तेहसाल और माशी तफावत को भी मौजू बनाया। उनके नावल में गरीब तबका सिर्फ हमदर्दी का इशारा नहीं बल्कि पूरे इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ एहतजाज की अलामत बन जाता है। ठाकुर ये बताओ तुम हमेशा शहर के खिलाफ रहते हो, क्या तुम्हें शहर में कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती? ये मैं तुमसे जानना चाहती थी लेकिन कुछ सोच के कभी कह न सकी। शहर में अच्छाई है काहे नहीं? गगनचुंबी भवन, सड़क, शिक्षा, फौज और हथियार बनाने में बड़ी प्रगति हुई है, दिलेर सिंह ने सोच सोच कर कहा। फिर काहे शहरी समाज की बुराई करते हो? यहाँ केवल 10% अमीर लोग गरीबों की बात करते हैं, बाकी हम तो 80% आम जनता की गरीबी की बात करें। अनकोट मुआसिर अहद में जबकि माशरा सियासी, समाजी और तहजीबी सतह पर शदीद तब्दीलियों से गुजर रहा है, जदीदियत और माबाद जदीदियत के मादा प्रस्ताना दौर में जहां शहरी जिंदगी तहजीबी इनहतात की तरफ गामजन है, वहीं मुआसिर इंसान दाखली और जहनी तौर पर इंतशार का शिकार है और ये इंतशार अहमद हसनैन के नावलों में नुमाया खसूसियत अख्तियार करता है। इनके यहाँ जिंदगी का मुशाहिदा महज सतही नहीं बल्कि गहरा और तजुर्बाती है। वो इंसान को उसके दाखली कर्ब, महरूमी और नफ्सियाती शिकस्त रेख के साथ

0: हवा भी यहाँ मुफ्त नहीं मिल पाएगी, मोल लेनी पड़ेगी। 90% अफराद को आलूदा हवा। पहले दुनिया खालिस पानी से महरूम हुई, अब हवा से महरूम। ये है वो कहता हूँ मैं सच। मैं जंगल में था तो अपने आप को बुरा आदमी समझता था, लेकिन शहर में तो हमसे बुरे बुरे लोग मौजूद हैं। जंगल में पनाह लिए हुए कोई डाकू लूट पाट करके अपनी भूख मिटा रहा। अमीर से लूट के गरीबों में बांट दे, अमीर गरीब की खाई पाट दे, लेकिन शहर में जितनी हत्याएं, रहजनी, बलात्कार और खून की घटनाएं हो रही हैं, जंगल में तो ऐसा नहीं होता।
1: सुप्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार प्रोफेसर अली अहमद फातमी ने नॉवेल के जबानो बयान और हरकतो अमल पर विशेष चर्चा की।
2: जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अहमद हसनैन, जिनको हम लोग शहंशाह कहते हैं, इनकी उर्फियत शहंशाह है, 50-55 साल पुराना साथ है। हैरत होती है कि ये आदमी इकोनॉमिक्स से एमए किए हुए, सारी जिंदगी टीचरी की, प्रिंसिपली की, बहुत गैर अदबी माहौल में रहे, लेकिन शेर व अदब से और तख्लीकी अदब से रिश्ता टूटने नहीं पाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जबान की चाशनी और ये जबान की पेशकश, उसकी तख्लीकी पेशकश, उसकी फनकाराना पेशकश, आप पढ़ते पढ़ते भी कहीं आपके आसाब पर, नफ्सियात पर आपके सवार हो जाते। बड़ा मुश्किल होता है अपने हमसर अदीब की किसी किताब पर सच्चाई से बोलना, और वो भी दोस्त जो पुराना, वो और मुश्किलें बढ़ जाती। मैं फिक्शन का आदमी हूँ, शायरी का नहीं हूँ। फिक्शन पर ही मेरी पीएचडी भी है और जिंदगी भर फिक्शन पर लिखता रहा। तो नसरी असनाफ में, तख्लीकी असनाफ में, मैं शायरी को भी जोड़ ले रहा हूँ उसमें, सबसे मुश्किल सिम जो है वो नावल। किसी जखीम नावल का ताना बाना बुनना और उसको मरबूत रखना और उसमें तख्लीकी तवानाई और शादाबी भी बरकरार रखना बड़ा मुश्किल था। डीएच लॉरेंस ने एक जगह लिखा है कि फिक्शन की इंतहा है उसका फलसफा हो जाना। इसीलिए किसी ने यह भी कहा कि नावल की शेरियात दरअसल जिंदगी की शेरियात। कोई फलसफा ले, कोई पहले लिखे, उसको पहले नावल होना। आप यकीन जानिए, इस नावल की सबसे बड़ी खूबी वही है जो किशंदर और इब्ने सफी के नावलों की हुआ करती थी। एक नशिस्त में ये नावल आपको पढ़ा लेगा। जबान इतनी अच्छी है, सारा जो फोकस है इस नावल का वो शहरी जिंदगी, तमद्दुनी जिंदगी कि जंगल में तो फिर भी अमन सुकून है, लेकिन शहर में, जरा जुमले सुनिए, जंगल तो यूं ही बदनाम है, असल जंगल तो शहर में है। और ये जुमला बड़ा खूबसूरत निकलता है कि शहर एक बहुत बड़ा धोखा है, जहां धर्म कर्म भी एक कारोबार बन गया है। बस अब तो हद हो गई, ये शहर अब रहने के लायक नहीं रहा, आ अब लौट चले।
1: नॉवेल आ अब लौट चले के रचनाकार सैयद अहमद हसनैन ने मेहमानों का आभार प्रकट करते हुए कहा,
3: मैं बहुत कुछ सुन चुका अपने इस नॉवेल के बारे में। उस सिलसिले में पहले मैं शुक्रिया अदा कर लूं कि शाहिद जमील साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, ये सफीर अदब पटना से जो रिसाला निकलता है उसके एडिटर थे, कॉलमिस्ट थे, साफी, बहुत कुछ के अंदर खूबियाँ हैं। पटना से इलाहाबाद का सफर बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो एजाज मुझे मिला और बज़्म यारा की जानिब से इस अंजुमन में मुझको ये सिपास्तावा पेश किया गया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कबर आबदी साहब ने उसको खूबसूरत अंदाज से पढ़ा, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे सामने रशीद साहब बैठे हुए हैं, फिरोज साहब हैं, मीसम रदी हैं, कबर आबदी हैं, प्रमुख साहब हैं, पूरी एक अंजुमनी के लिए बैठे हुए हैं। नावल के सिलसिले में बहुत कुछ बात हो चुकी। एक तकरीर में जनाब मुजाविर हुसैन साहब, जो इब्ने सफी के जाने के बाद यहाँ पर जासूस दुनिया लिखते थे और नखत पब्लिकेशन से वो किताबें जासूसी छपती थी, और ठेले पर रात करके वो ले जाई जाती और गांव, शहर, देहात, दूर दूर तक ले जाती। वो जासूसी नावल उसने उर्दू के लिए बहुत तख्लीक की, उर्दू जबान का बहुत फरोग किया, बहुत अच्छा हुआ। एक बार डॉक्टर अली हैदर साहब की एक किताब का इजरा था जिसके लिए

0: जावेद सांग साहब लखनऊ से आए और इब्ने सफी के जाने के बाद यही लिखने लगे थे या सूफी दुनिया, और वो भी उसी अंदाज में लिखते थे। उनका भी अंदाज बहुत अच्छा था, सेंट्रल हिस्ट्री में हेड थे उर्दू के। तो उस इजरा में आए तो हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आमा शहंशाह तुमने क्या नावल लिखा भाई, मैंने तीन बार पढ़ा। तो मैंने उनसे कहा भुज्जन भाई क्यों मजाक कर रहे हैं उससे, और आप जैसे नावलिस्ट हैं, आपने सैकड़ों नावल लिखे हैं, आप मेरे लिए ऐसी बात कह रहे हैं। तो कहते कहे नहीं नहीं मैंने तीन बार पढ़ा है, वो जासूसी था और ये अदबी है, ये अदबी है, ये तुम्हारा जो है ये बहुत अच्छा है। तो खैर मैं खुश हुआ। रात में जब मैं लेटा था तो उसी वक्त हमारे एक अजीज हैं अख्तर भाई, वो भी नावल बहुत पढ़ते हैं जासूसी दुनिया और तुर्सी। तो मैंने खुशी खुशी उसे बयान किया कि अख्तर भाई बड़ी खुशी की बात है कि आप इस नावल के अंधेरों के मुसाफिर की तारीफ कर रहे हैं, वो इससे पहले आ चुका है। उसको मुजाविर साहब ने तीन बार पढ़ा तो हमको तो बोले कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। हमने कहा क्यों, क्या बात, तीन बार पढ़ने में क्या दिक्कत है। कहने लगे कि मैंने तो 30 बार पढ़ा होगा उसको। 30 बार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अच्छा, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो कह रहे हैं कि मैं जब जब बोर होता हूँ और मैं शेल्फ पे हाथ खाता हूँ तो इसी पे मेरा हाथ चला जाता है। तो ये पसंदीदगी जो थी उससे मुझे बहुत खुशी बखती है, और मैंने सोचा कि इस पे कुछ लिखना चाहिए। और वो उसके सिलसिले में उसका दूसरा पार्ट, जैसा कि आप मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा, और मैं आप सभी हजरात का मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी देर तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और सुन रहे हैं, और इस स्टेज पर हमारे साथ जो बैठे हुए काबिल हजरात बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आपकी बहुत ही अच्छी और उमदा ऐसी सी बातें कही हैं जो शायद मैं उसके मुस्तहिक नहीं था, लेकिन वो किताब शायद कुछ कह रही है, उसका इजहार हुआ है, उसके लिए मैं इसे मुबारकबाद देता हूँ।
1: समारोह के आखिर में शोरा ने अपने कलाम पेश किए, जिनमें डॉक्टर कमर आब्दी, असद गाजीपुरी, असलम निदानी, फरमूद इलाहाबादी, बख्तियार यूसुफ, अंकिता अनुश्री, सलाल इलाहाबादी और वाकिफ अंसारी मुख्य रहे। समारोह का संचालन बख्तियार यूसुफ ने किया। अभी आप सुन रहे थे उर्दू के फरोग में नॉवेल का योगदान विषय पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
3: श्रोताओ नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
4: धन्यवाद।
3: आशीष जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता हैं वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
4: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
3: अच्छा,
4: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिमनास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
3: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
4: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
3: अच्छा।
4: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
3: जी।
4: और मेरे फादर को नहीं पता था, मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
3: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती जरूरी होती हैं। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
4: जी,
3: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मूवमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
4: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था।
3: अच्छा।
4: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
3: जी
4: उस टाइम पे जूनियर की थी।
3: अच्छा।
4: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
3: अच्छा।
4: वहाँ से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
3: जी,
4: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहाँ गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहाँ पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल

0: लाया था
1: हाँ
0: 2006 में ये हुआ, और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
1: अच्छा
0: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था,
1: जी
0: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिमनास्टिक का कंपटीशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3 to 4 thousand पब्लिक उस स्टेडियम में थी। और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
1: अच्छा
0: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल
0: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार, कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है
1: निश्चित रूप से बड़ी
0: जी।
1: बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
0: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पर अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे,
1: अच्छा
0: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में। और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति
1: जी
0: भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे, उसी डेट के 1-2 दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे
1: अच्छा
0: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो, देखिए, आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, 1 दिन आपको लेने में लगेगा, और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए उस समय वो ज़रूरी था, वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसा मैंने बोला, उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कंपटीशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे। तो वहाँ पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद, उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया। बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था, क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है, जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं, तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है, तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है, नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे। बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए, मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज़ आने लगे,
1: क्या बात।
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लगा लग रहा लोग आए हैं। बट लिटरली जब मैंने इंटर किया, मुझे इतना क्राउड देखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था।
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं, उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है। तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा, वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स, जो आपकी एजुकेशन थी, वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिम्नास्टिक्स में, जैसे मैंने बताया, मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था।
1: अच्छा
0: तो क्या होता है, नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी।
1: हाँ
0: जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला, ट्यूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में,
1: अच्छा
0: उसको खेलने के बाद क्या होता है, अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं

0: तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है। और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है,
1: अच्छा
0: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था।
1: अच्छा
0: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद, मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम
1: अच्छा
0: पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहाँ तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ, उतनी
0: था,
1: पॉपुलरिटी
0: हाँ
1: नहीं थी इंडिया
0: पॉपुलैरिटी नहीं
1: में।
0: थी। लेकिन जब मैं खेल के आया वहाँ से, मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफ़ी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन
0: गया।
1: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं,
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है,
1: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं, तो
0: हाँ
1: उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं
0: देखिए
1: पूछना चाह
0: मैं
1: रहा था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
1: अच्छा
0: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो
1: जी
0: पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं, बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है।
1: जी
0: जिम्नास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता-पिता की जिम्मेदारी है कि
0: जी
1: वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है। ठीक
0: जरूर,
1: है, चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना,
1: जी
0: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है, तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ,
1: जी
0: जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था,
1: जी
0: और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज़ है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी
1: जी
0: भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके डाल दिया, तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया, तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान, मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है, उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो, एक खेल है, उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
4: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
3: जी।
4: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ, प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक

0: रूप में कार्यरत हूँ यहीं प्रयागराज में।
1: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं, और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
0: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए।

0: आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
1: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ, वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए।
0: जी, हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है वो क्या है?
1: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे,
0: जी
1: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए।
0: जी
1: और मेरे गुरु भी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बढ़िया हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
0: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है, चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
1: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है।
0: जी
1: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होते हैं, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉटपुट, तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो। ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको
0: जी
1: ज़्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन,
0: जी
1: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
0: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
1: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
1: तकनीक का तो इसमें, इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज़ करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
0: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इसका?
1: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है।
0: जी
1: भारत में आप गर्मी का, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं
0: जी
1: जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था,
0: जी जी जी
1: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो वैसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
0: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है,
1: जी
0: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: चुनौतियां तो बहुत हैं।
0: जी
1: पहली चीज़ तो स्पोर्ट्स

0: परसेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। ज़्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज़ करने जा रहा है, तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए।
1: जी चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
0: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े
1: जी
0: हेमंत थोर से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका,
1: जी
0: यूरोपियन थोर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब,
1: जी
0: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनके ट्रेनी भी। कोच थर्ड था और उनके ट्रेनिंग फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो
1: जी
0: जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
1: और कोई अनुभव?
0: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं,
1: जी
0: अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं।
1: जी जी
0: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पर हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहाँ बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो
1: जी
0: दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं। खिलाड़ी की ज़िंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है।
1: जी चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं, तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीज़ों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
0: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है,
1: जी
0: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
1: जी
0: आज असफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
1: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
0: एक हेमंत थोर खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा।
1: जी
0: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था,
1: जी
0: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
1: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
0: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
1: जी
0: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को,
1: जी
0: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है,
1: जी
0: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो
1: जी
0: आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी।
1: जी भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है।
1: जी
0: अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मज़ा आएगा।
1: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। सबसे पहले लीजिए सुनिए सितार पर राग देशकार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शाहिद परवेज का सितार वादन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।